0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: रिश्तों के नाम बदल जाते हैं, बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑफ लाइफ इज कि प्यार नहीं बदलता, सिर्फ रिश्तों के शेप साइजेस बदल जाते हैं. सो माय एक्स एंड आई वर्क इन द सेम ऑफिस, और आज मैं ऑफिस आई जिंदगी से काफी परेशान थी. लिफ्ट में घुसी, अपने चेहरे को ठीक किया, जब भी मैट की गीत की तरह अपने फोरहेड से अपने रिंकल्स हटाए, ऐसे गुच्चड़ मुच्चड़ करके अपनी उंगली से, एंड आई एंटर्ड ऑफिस लुकिंग लाइक द पोस्टर गर्ल फॉर हैप्पीनेस. सब ने मेरी हैप्पीनेस को बिलीव किया, मुझे गले लगाया, एवरीथिंग वेंट वेल टिल आई वेंट एंड सेड हाई टू माय एक्स, एंड ही लुक्ड एट मी एंड सेड, क्या हो गया राना, सब कुछ ठीक है? एंड आई वाज लाइक, हाँ सब कुछ ठीक है, क्यों? एंड ही वाज लाइक, पता नहीं, तेरी शक्ल देख के लगा कि शायद कोई परेशानी है, किसी चीज में हेल्प कर सकता हूँ मैं तेरी? एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई वाज लाइक, नहीं तूने पूछ लिया, दैट्स इनफ फॉर मी, मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ. और जब वॉशरूम गई तो ये सोचा कि प्यार के नाम बदल सकते हैं, रिश्तों के शेप्स एंड साइजेस बदल सकते हैं, लेकिन प्यार जैसा था हमेशा वैसे ही रहता है. एंड ऑन दैट नोट, माई क्वेश्चन टू यू इज, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है दैट नो मैटर वॉट हैपन्स इन दिस वर्ल्ड, आपको पता है दैट अगर आपको एक दोस्त की जरूरत होगी, योर एक्स विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू? अगर हाँ या ना, वट एवर योर आंसर इज, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, लेट्स टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है RoCHIE, एंड आई एम द गर्ल इन लव विद लव. ऑन दैट नोट, कहीं मत जाना, जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
2: Jai Gurudev, Gayatri Chetna Center, Piscataway. Aapne ane aapna parivar ne Guru Purnima ane Rudrabhishek Mahotsav ma sneh bharyu aamantran aape che. Shanivar 1 Auguste, savare 10 vage, Shirji Rudrabhishek ane sanje 5 vage, Virat Deep Yagna. રવિવાર 2 ઓગસ્ટે સવારે 10 વાગે 251 કુંડિયા ગાયત્રી મહાયજ્ઞ શાંતકુંજ હરિદ્વારના પૂજ્ય સંતો દ્વારા વૈદિક વિધિ મુજબ અનુષ્ઠાન અને ડોક્ટર ચિન્મય પંડ્યાજીની પાવન ઉપસ્થિતિ 7323578200 જય ગુરુદેવ.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
6: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
7: अब मिर्ची खा.
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: तो क्या हुआ अगर आपके बर्थडे केक जो आपने अपने बॉयफ्रेंड के लिए बनाया था उसको आपके कुत्ते ने थोड़ा सा लिक कर दिया? आपका डॉगी भी तो आप ही का है, इट डजंट मैटर. आपने उसे बस अच्छे से कोट कर दिया विद अ लॉट ऑफ व्हिप्ड क्रीम और वैसे का वैसा डॉगी ईटन केक अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया. शर्म नहीं आई आपको ये करते हुए?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: बट आपकी जिंदगी में जो भी ऐसा कन्फेशन है ना जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफपी पर एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो जल्दी से हिट मी अप एंड मीनवाइल आई हैव माय मिस्ट्री कॉलर विद मी. हाय मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय रोशी, हाउ आर यू?
1: आई एम वेरी गुड. और जब मैंने आपकी कन्फेशन सुनी तो मैं और भी ज्यादा खुश हो गई. मेरे पास कुछ सवाल भी थे आपसे पूछने के लिए, बट लेट्स स्टार्ट विद योर कन्फेशन नॉटी गर्ल.
3: So basically, मेरे को एक कन्फेशन करना है ऋषि आपसे. सो वॉट हैपन्स विद मी इज, सो बेसिकली यू नो आई एम मिडिल क्लास समवेयर. सो मेरे को बहुत ज्यादा फैंटेसी है कि मैं बहुत लग्जरी ब्रांच की लॉन्ड्री पहनूं. तो आई यूजली विजिट देयर स्टोर्स एंड आई ट्राई, मतलब अ लॉट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि मैं बस उनको जाती हूँ, आई जस्ट ट्राई ऑल देयर रेंजेस एंड क्लिक माई पिक्चर्स, बट आई डोंट बाय देम. सो व्हेनेवर आई एम टेक्स्टिंग विद माई बॉयफ्रेंड, सो आई जस्ट यू नो शेयर माई पिक्चर्स विद हिम. सो अब मुझे ऐसा होता है कि मैं उन्हें खरीद तो पा नहीं रही हूँ, बट मेरे को दिल बहुत होता है दैट आई शुड ट्राई देम. सो आई एम डूइंग दिस अ लॉट ऑफ टाइम.
1: माय गॉड, आपका बॉयफ्रेंड तो खुश हो जाता होगा.
3: समवे यस, बट कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती थोड़ी सी.
1: क्यों?
3: सब हम लोग एक दूसरे के सामने होते हैं, देन आल्सो आई प्ले स्मार्ट.
1: क्या करते हो आप? मतलब तब तो उसको ही एक्सपेक्ट्स ना कि आप ये ऐसे हाई ब्रांड का लॉन्ड्री लाइक यू वुड बी वेयरिंग इट, और आपके पास तो है नहीं, तो फिर क्या करते हो?
3: I play smarter, so मैं थोड़ा ज्यादा ही वाइल्ड होकर खुद के खुद ही कपड़े उतार देती हूं जल्दी से. And I show him that I'm
1: यार तू तो कमाल की बंदी है, तेरे जैसे इंसान को मतलब I'll be happy to roshify you. Can I please roshify you, my darling?
3: Yes, please.
1: Okay, there you go, my darling.
4: You've been roshified.
1: मजे आ गए आपका एक कन्फेशन सुनके. It was absolutely incredible. ऐसे गंदे काम फिर से किए तो फिर से बता देना फोन करके, ठीक है? और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह कोई इतनी रैंडो कन्फेशन है, हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफपी, वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
2: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
3: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
4: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
7: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार। दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
8: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अगर आप मेरी तरह एक स्मार्ट थिंकिंग गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो देन दिस हैक इज समथिंग जो आपने ऑलरेडी ट्राई कर रखा होगा बट फॉर ऑल दोज पीपल हु हैवंट येट थॉट अबाउट इट जितनी बार आपका पार्टनर कोई क्यूट चीज एक्सप्रेस करता है जैसे मान लो आई रिमेम्बर व्हेन माय देन बॉयफ्रेंड और मैं बुक स्टोर जाते थे ना उसे मतलब कम से कम एक बार में 6 किताबें पसंद आती थी बट हम खरीदते तो सिर्फ 2 या 1 थे तो बाकी की जो 4 या 5 बच जाती थी ना मैं उनका नोट लिख लेती थी कि इसे ये पसंद आया ये पसंद आया तो जब भी हमारी एनिवर्सरी होती थी या वी डिड मंथली एनिवर्सरी सो वॉट आई नो इट्स अ लिटिल क्रिंज या फिर उसका बर्थडे होता था या कुछ भी सेलिब्रेशन लाइक होता था मेरे पास ऑलरेडी फोन में एक नोट होता था जिसमें उसकी फेवरेट चीजें जो उसके पास नहीं है बिकॉज ही एक्सप्रेस्ड अ डिजायर टू बाय देम इवेंचुअली मैं बस उसमें से कुछ खरीद के उसे गिफ्ट कर देती थी एंड ही यूज्ड टू बी लाइक ओ माय गॉड रोशी यू आर द बेस्ट गर्लफ्रेंड एवर उसे क्या पता था कि मैं बस स्मार्ट गर्लफ्रेंड हूँ नॉट नेसेसरली द बेस्ट गर्लफ्रेंड आप भी अपने रिलेशनशिप में ये हैक ट्राई करके देख सकते हो एंड आई प्रॉमिस you it works every single time and once it works for you mujhe thank you bolne ke liye you can find me on the gram ya on facebook mera naam hai mirchi roshi naam ki spelling hai r-o-c-h-i-e so go ahead and hit me up baby and while you do that kahin mat jana kyunki wapas to yahi hai aana sunte raho mirchi it's hot

0: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Bus. मैंने डिसाइड कर लिया, इट इज डन. अगर इस साल नहीं तो अगले साल आई एम डेफो गोइंग टू बी इन अ प्रॉपर लेजिट रिलेशनशिप और मैं बहुत सारा रोमांटिक ट्रैवल करने वाली हूँ. और द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू जब मैं अपने रोमांटिक ट्रैवल्स शुरू करूंगी, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू, इज गोइंग टू बी द मोस्ट अमेजिंग थिंग एवर. एंड दैट इज गोइंग टू बी द ओल्ड ट्रेन जो ऊटी में चलती है. ये इतनी सुंदर ट्रेन है, बट वो सब छोड़ो. छैया छैया याद है, चल छैया छैया छैया छैया. दिस इज द सेम ट्रेन जो ऊटी में चलती है. इट्स अ टॉय ट्रेन. एंड अगर आप फर्स्ट क्लास टिकट्स बुक करा दो, देन इट इज द बेस्ट थिंग टू डू, बिकॉज मतलब थ्रू द डे ये ट्रेन अपेरेंटली काफी क्राउडेड हो जाती है. लेकिन अगर आपने टिकट्स बुक करा दिए, देन यू आर प्रीटी सॉर्टेड, क्योंकि आपको एक सीट तो पक्का ही मिल जाएगी. एंड यू नो द मोस्ट इनक्रेडिबल थिंग इज, ये जो ट्रेन है इट्स एक्चुअली अ टॉय ट्रेन एंड दिस रन्स ऑन अ ब्यूटिफुल, आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू, कितना सीनिक रूट बिटवीन ऊटी एंड मेट्टुपलायम. एंड ये 1908 से चल रही है भाई ट्रेन. इट्स अ डेजिग्नेटेड यूनेस्को हेरिटेज साइट. इससे ज्यादा मुझे रीजन नहीं चाहिए टू गो ऑल द वे टू ऊटी जस्ट फॉर दिस ट्रेन राइड. बस मैं और मेरा पार्टनर चल छैया छैया छैया. इफ यू हैव ऑलरेडी डन दिस, देन आई टोटली वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू मॉर्निंग ग्लोरी, वॉट इज दिस लव स्टोरी. और वो बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपके दिल के साथ तो बहुत लोगों ने खेला है, लेकिन आपके दिमाग में किस किस को इंटरेस्ट है? मुझे है, बिकॉज आई एम अ सेपियो सेक्सुअल. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. सेपियो सेक्सुअल का मतलब है द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन अदर पीपल बिकॉज ऑफ देयर ब्रेन. और अगर आप मेरे साथ लव गेम खेलना चाहते हो, देन हिट मी अप बेबी ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम मिर्ची रोशी, आई जस्ट टोल्ड यू. नाम की स्पेलिंग ROCHIE. और मेरे साथ सिद्धार्थ है, जो कल मुझे रेडियो पे सुन रहे थे, एंड टुडे ही वॉन्ट्स टू प्ले द गेम विद मी. हाय सिद्धार्थ.
2: हाय हाय रोशी.
1: क्या आप तैयार हो मेरे साथ लव गेम खेलने के लिए?
2: बिल्कुल, एब्सोल्युटली.
1: अच्छा, तो आज के लव गेम में द स्पेशल गेम वी आर प्लेइंग इज द लव ताक्षरी. तो बेसिकली हम अंताक्षरी खेलेंगे विद द वर्ड. एक ऐसा वर्ड होगा जिससे दो गाने मैं गाऊंगी, दो आप गाओगे. ठीक है?
2: ठीक है.
1: मैं आपको एक कठिन वर्ड देती हूँ और आप पहले उससे गाना गाओगे, सेकंड गाना मेरा होगा. और आपका वर्ड है रंग, यानी कि कलर.
2: अच्छा, रंग पे है थोड़ी सी धूल मेरी, धरती के मेरे बसंत की थोड़ी सी खुशबू आ रही थी, मस्त पवन की थोड़ी सी झोंकने वाली, लग लग लग लग रस बूंदे दिल में हो बूंद, वो है रंग दे बसंती बसंती रंग. सॉरी, मैं तो पूरा कंप्लीट लिरिक्स जानता हूँ, रंग दे बसंती पूरा गाना जो है वो
1: मैं. बहुत सही यार, मैं भी यही सोची थी कि इसमें रंग का आ रहा है और आपने सडनली बीच में काटा मारा. नहीं हुआ, छोड़ वो सब यार, रंग दे बसंती. अच्छा ठीक है, मेरी बारी अब. ओके. लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से, इसमें रंग का. अच्छा ठीक है, गलती हो गई मुझसे. रंग रंग मेरे रंग रंग में रंग जाएगी तू रंग, व्हाटएवर व्हाटएवर. आपकी बारी.
2: मोहे रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे, मोहे रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे, मोहे रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे.
1: एक तो आप गाना इतना अच्छा गाते हो कि मुझे गूज बम्स हो गए. दूसरा आप मतलब बहुत ही मेजर नेशनलिस्ट हो यार. दो गाने आपने गाने के लिए गए, दोनों में एक में रंग दे बसंती, एक में रंग दे बसंती चोला. अब मैं कैसे इसको कंपेयर. ओके ठीक है. ए रंग रेज मेरे, ए रंग रेज मेरे, उसमें आगे बोलता है ना कि कौन सा रंग होला है.
2: हाँ,
1: है ना.
2: तो मेरी बता मुझे.
1: हाँ, तो मेरी तरफ से मैं सूफी गाने गा रही हूँ, आप नेशनलिस्ट. क्या जोड़ी है हमारी, रोशिफाई करूँगा आपको. आई थिंक आप रोशिफिकेशन के लिए तैयार हैं. एंड हियर इट इज.
3: यू've बीन रोशिफाइड.
1: आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा दैट आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू. एंड दूसरी चीज, आप बहुत सुंदर गाते हैं, हमेशा गाते रहे.
2: थैंक यू. मैं बस आपको, मुझे कल आपका जो कन्वर्सेशन था इतना इंटरेस्टिंग लगा कि आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू जस्ट रैंडमली विदाउट एनीथिंग. तो थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, जी आपने मुझे एक मौका दे दिया आपके साथ बात करने.
1: चलो ना यार, हम तो मतलब वी आर फैमिली, आप और मैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. और ऐसे सुनते रहिए और गाते रहिए. ठीक है.
2: Thank you. Bye.
1: और अगर आप भी ऐसे जिंदगी में सिर की तरह मेरे साथ लव गेम खेलना चाहते हैं, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.

स्वागत। मैं ना अपनी फेवरेट हूँ, खुद की फेवरेट। ये डायलॉग आपने जब भी मेट में सुना था ना, एंड आई जेन्युइनली थॉट इट वाज अ लिटिल बिट क्रेजी, लेकिन इट टर्न्स आउट कि ये डायलॉग में काफ़ी इफेक्टिवनेस है, इसलिए क्योंकि जो लोग खुश रहते हैं, खुशी इतनी कॉन्टेजियस होती है दैट दी अदर पर्सन एंड्स अप फीलिंग हैप्पी जस्ट इन योर कंपनी। और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, मतलब मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रही हूँ, बट बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मुझसे मिलके उन्हें ऐसे वाली फीलिंग आती है जैसे दे आर मीटिंग गीत फ्रॉम जब वी मेट, और फिर वो इतने खुश हो जाते हैं कि मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। इट काइंड ऑफ हेल्प्स दैट यू नो लाइक पर्सनैलिटी ऐसी है यार, क्या करें। बट अगर आप अपनी किसी डेट पर जा रहे हो ना, डू वट आई ऑलवेज डू, अगर आपका मूड भी खराब है ना, फेक इट टिल यू मेक इट। खुश होने की प्रैक्टिस कर लो, नहीं भी खुश हो, क्योंकि जैसे ही आपका डेट आपको देखेगा एंड ही इज लाइक दिस गर्ल इज सो हैप्पी मैन, वो खुद इतना खुश हो जाएगा दैट ही विल वॉन्ट टू मेक द फर्स्ट डेट इन टू द सेकेंड डेट, एंड इज इन दैट वॉट यू वॉन्ट। तो अगर आप अपने ऐसे ही सपने पूरे करना चाहते हो, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ इन डूइंग दैट। ऑल यू हैव टू डू इज हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो डू वट एवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

मटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमॉन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मैं अपने लिए एक घर बनाना चाहती हूँ और मैं वो घर मैनिफेस्ट कर रही हूँ. हो सकता है इस साल ना हो, अगले साल ना हो, उसके बाद वाले साल ना हो, बट द ट्रूथ इज इफ यू हैव मैनिफेस्टेड इट, इट विल हैपन. ये मेरी स्टोरी नहीं है, मेरी बेस्टी की स्टोरी है, हु हैपन टू से दिस टू हर बॉयफ्रेंड. और क्योंकि बंदे पता नहीं कहाँ से सोचते हैं, दिमाग से ऑब्वियो, लेकिन लाइक दे आर सो प्रैक्टिकल एंड वियर्ड. तो वो उसको कहता है कि ऐसे तूने सोच लिया और हो गया, घर ऐसे थोड़ी खरीदे जाते हैं. कट टू माय एक्स बॉयफ्रेंड, हम ऐसे उसके घर में थे और एक बम्बल बी अंदर आ गई. तो मैंने उसे कहा कि मारना नहीं इसे, खिड़की खोल दे और यूनिवर्स को बोल कि इस बम्बल बी को बाहर भेज दे, तो मधुमक्खी अपने आप बाहर चली जाएगी, मारने की जरूरत नहीं. मुझे देख के कहता है तुम लोगों की अच्छी दुनिया है, यहाँ पे ऐसे होती है चीजें, यहाँ पर तो मारेंगे नहीं तो ये खुद हमें काट देगी. एंड आई सेड एक मिनट देना, और मैंने एक्चुअली मैनिफेस्ट किया कि वो बम्बल बी बाहर चली जाए. एंड आई सेड प्लीज बम्बल बी गो आउटसाइड, एंड इट वेंट आउटसाइड. एंड आई एम नॉट किडिंग यू, वुमेन आर ऑल हार्ट. हम जब मैजिक में बिलीव करते हैं तो हम मैजिक देखते हैं. बंदे ऑन द अदर हैंड ओनली बिलीव इन एरोटिक थ्रिलर्स एंड प्रैक्टिकलिटी. वी आर नॉट इन, सुन लिया, वी आर नॉट इन. और अगर आप हमारा दिमाग बदलना चाहते हो, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, आई लिसन टू योर पर्सन. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. सो नाउ गो अहेड, हिट मी अप विद योर स्टूपिड प्रैक्टिकलिटी, और कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, It's hot.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: तो क्या हुआ अगर आपके बर्थडे केक जो आपने अपने बॉयफ्रेंड के लिए बनाया था उसको आपके कुत्ते ने थोड़ा सा लिक कर दिया? आपका डॉगी भी तो आप ही का है, इट डजंट मैटर. आपने उसे बस अच्छे से कोट कर दिया विद अ लॉट ऑफ व्हिप्ड क्रीम और वैसे का वैसा डॉगी ईटन केक अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया. शर्म नहीं आई आपको ये करते हुए? बार आपकी जिंदगी में जो भी ऐसा कन्फेशन है ना जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफपी पर एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो जल्दी से हिट मी अप एंड मीनवाइल आई हैव माय मिस्ट्री कॉलर विद मी. हाय मिस्ट्री कॉलर.
2: हाय रोशी, हाउ आर यू?
1: आई एम वेरी गुड. और जब मैंने आपकी कन्फेशन सुनी तो मैं और भी ज्यादा खुश हो गई. मेरे पास कुछ सवाल भी थे आपसे पूछने के लिए, बट लेट्स स्टार्ट विद योर कन्फेशन, नॉटी गर्ल.
2: So basically, मेरे को एक कन्फेशन करना है ऋषि आपसे. So what happens with me is, so basically, you know, I'm middle class somewhere. So मेरे को बहुत ज्यादा फैंटेसी है कि मैं बहुत लग्जरी ब्रांड्स की लॉन्ड्री पहनूं. तो आई यूजली विजिट देयर स्टोर्स एंड आई ट्राई, मतलब अ लॉट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि मैं बस उनको जाती हूँ, आई जस्ट ट्राई ऑल देयर रेंजेस एंड क्लिक माई पिक्चर्स, बट आई डोंट बाय देम. सो व्हेनेवर आई एम टेक्स्टिंग विद माई बॉयफ्रेंड, सो आई जस्ट यू नो शेयर माई पिक्चर्स विद हिम. तो अब मुझे ऐसा होता है कि मैंने खरीद तो पा नहीं रही हूँ, बट मेरे को दिल बहुत होता है दैट आई शुड ट्राई देम. सो आई एम डूइंग दिस अ लॉट ऑफ टाइम.
1: माय गॉड, आपका बॉयफ्रेंड तो खुश हो जाता होगा.
2: समवेयर यस, बट कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी.
1: क्यों?
2: सब हम लोग एक दूसरे के सामने होते हैं, देन आल्सो आई प्ले स्मार्ट.
1: क्या करते हो आप? मतलब तब तो उसको ही एक्सपेक्ट्स ना कि आप ये ऐसे हाई ब्रांड का लॉन्जरी लाइक यू वुड बी वेयरिंग इट, और आपके पास तो है नहीं, तो फिर क्या करते हो?
2: I play a little smarter, so मैं थोड़ा ज्यादा ही वाइल्ड होकर खुद के खुद ही कपड़े उतार देती हूं जल्दी से. And I show him that I'm more exciting.
1: यार तू तो कमाल की बंदी है, तेरे जैसे इंसान को मतलब I'll be happy to roshify you. Can I please roshify you, my darling?
2: Yes, please.
1: Okay, there you go, my darling.
3: You've been roshified.
1: मजे आ गए आपका एक कन्फेशन सुनके. It was absolutely incredible. ऐसे गंदे काम फिर से किए तो फिर से बता देना फोन करके, ठीक है? और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह कोई इतनी रैंडो कन्फेशन है, हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफपी, वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

पुरानी रोमांटिक पिक्चरें देखने में जो मजा है ना, वो शायद कंटेम्प्रेरी फिल्म्स में नहीं आता फॉर सम स्ट्रेंज रीजन. आई हैव रियलाइज कि जब भी मैं कभी कभी या सिलसिला या इवन लम्हे जैसी कोई फिल्म देखती हूँ ना, मेरे अंदर जितना भी मरा हुआ रोमांटिक होता है ना, वो सडनली जाग जाता है. एंड इट्स लाइक, कहाँ है मेरी जिंदगी में असली प्यार. एंड आई गेस इट्स बिकॉज उस जमाने की पिक्चरें ऐसी होती थी दैट वो इतनी हाई ऑन इंटेंसिटी एंड रोमांस होती थी, जैसे दिल से इवन, व्हाट अ फैंटास्टिक मूवी, कि आपके अंदर अगर रोमांटिक इमोशंस मर गए हैं तो वो ये पिक्चरें देख के आई स्वेयर जाग जाते हैं. तो अगर आप सिंगल हो एंड यू वांट सम रोमांस, बट आपको बंदे के साथ रोमांस नहीं करना है, बस 2-3 घंटे के लिए प्यार एक्सपीरियंस करना है, My suggestion is you go back and revisit Yash Chopra ki classic romantic films. Aur agar aap ek relationship mein ho aur aapka romance quotient kam ho gaya hai, then too watch these really soppy, mushy, cheesy romantic films. Kyunki as much as it sounds like a cliche, sach baat to ye hai ki aisi picture dekh ke thodi der ke liye sahi hamare andar na wo jo teenager wala romantic insaan hai na, jise hum kahin bahut dur piche chhod aaye hain, That kind of comes back to life. And दुनिया में रोमांस से बड़ी खूबसूरत फीलिंग क्या है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो फील फ्री टू हिट मी अप अबाउट इट इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. बट सीरियसली, पता है जिसके पास लव है ना, उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोड्स.

0: ज़ारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी, और नई नवेली एंट्री डेब्यू किया है सीधा ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। गाने आर्ट एक तरह से एक टिकट होते हैं टू अ मेमोरी, एंड सम ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माय लाइफ आर ऑफ दोस कॉलेज डेज। ये बात कभी सोची है कि जब हम उस उम्र में थे जब कुछ ज्यादा पता नहीं था तो हम सबसे बहादुर थे। उस उम्र में जो भी बनाया, जो भी सपने देखे, जो भी लिखा, आधा अधूरा या पूरा, उसमें एक चीज थी जो अब बाद में हम कहीं खो देते हैं, एंड दैट इज होप। वो हमारी जिंदगी का सबसे रॉ फेज होता है, जब हम ओवर कैलकुलेटिव नहीं होते कि इससे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, करियर बनेगा या नहीं, बस दिल में कुछ था और लिख दिया। एंड दैट्स व्हाई इन द म्यूजिक स्पेस एज वेल, अगर आप देखेंगे सम ऑफ द बिगेस्ट पॉप स्टार्स जो हमने देखे हैं इन द लास्ट 4-5 years हैव बीन दीज यंग गन्स। बिली आइलिश द ग्लोबल आइकॉन का एग्जाम्पल ले लो, उनका गाना ओशन आइज तब फटा जब वो सिर्फ 18 साल की थी। हमारी अपनी जीनी जो देहरादून से है अब मुंबई में गाने बनाती है,

उनके गाने लाइक सुकून, आशियाना, वो जनता के साथ कनेक्ट इसलिए ज्यादा करे बिकॉज उसकी राइटिंग बहुत ऑनेस्ट थी। तो ये ऑनेस्टी और ये रॉनेस कोई टेक्निक नहीं है या कोई हिम्मत नहीं है, ये आई थिंक सोचने की हिम्मत है जो कहीं ना कहीं आई रियली फील वो उम्र अलाउ करती है। पर असली सवाल तो ये है कि जब हम कभी ये हिम्मत खो देते हैं तो क्या वो वापस मिल सकती है, क्या हम जीरो पे आके वापस शुरू कर सकते हैं। एक आर्टिस्ट है लखनऊ से जिनका एक गाना बहुत पॉपुलर हो रहा है, गाने का नाम है तारे, आर्टिस्ट का नाम है फरक, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट सॉन्ग्स जो जनता के दिल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें एक लाइन है जो आपको रोक देगी, वो कहता है, परिंदा पिंजरे में इतने दिन रहा कि अब आसमान से ही डर लगता है। देयर सो मच टू टॉक अबाउट दिस सॉन्ग बट आई विल लेट यू सिट विद इट। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। आर्टिस्ट का नाम है फरक, गाने का नाम है तारे। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10 एज आवर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। एंजॉय।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: There's something so honest, so soothing about this song. Gaane ka naam hai Tare, artist ka naam hai Farak. Naam yaad rakh lijiye, because gaana to definitely yaad ho gaya aapko. Back to the countdown, agle wale gaane ki taraf badhte hain. संजू राठौर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज, गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके बैंगल्स इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

0: एशकिंग की आवाज में एक गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने हर्ष नुसी की आवाज में उन्हीं की लिरिक्स सुनी की कॉम्पोजिशन वाला गाना सुना, गाने का नाम साडी सुन ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। म्यूजिक आर्ट है, आर्ट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। एंड एक म्यूजिक का फॉर्म जो सबसे ट्रू है इन द वे इट एक्सप्रेसेस इज हिप हॉप। ये जॉनरा ना किसी स्टूडियो में पैदा नहीं हुआ था, ये वहां से आया है जहां लोगों को माइक नहीं दिया जाता था लेकिन दिल में कहानियां बहुत हैं। जहां तकलीफ कोई सुन नहीं रहा है तो एक्सप्रेशन म्यूजिक बन गया। हर कंट्री का, सिटी का, एरिया का रैप का फॉर्म अलग होता है, कॉज वहां से जुड़ी कहानियां अलग होती है। दिल्ली हिप हॉप अलग है, मुंबई हिप हॉप अलग है, केरला का हिप हॉप बहुत अलग है। पर व्हाट्स कॉमन अमंगस्ट ऑल दीज फॉर्म्स इज द रियलिटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ द आर्टिस्ट। पर कहीं ना कहीं इस पूरे मूवमेंट के पोस्टर बॉय रहे हैं डिवाइन, जिनका असली नाम विवियन फर्नांडिस है। बहुत सारे लोगों को लगता है दैट गली बॉय जो मूवी बनी थी वो उनकी लाइफ पे बेस्ड थी। दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। उन्होंने उस मूवी में कंसल्ट किया था, बहुत हेल्प करी थी, उनका म्यूजिक है बट वो उनके बारे में नहीं है। बट देयर आर सॉन्ग्स लाइक मेरी गली में जो पूरे देश ने पहली बार सुना ऑन अ बिगर लेवल, कॉज वो गली बॉय जैसी मूवी में आया। पर उसी साउंड ट्रैक में एक गाना था कॉल्ड आजादी। इस गाने के प्रोड्यूसर है डब शर्मा, जो चंडीगढ़ का एक लड़का है जिन्होंने अपने कमरे में बैठकर ये कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, किसी फिल्म के लिए नहीं, किसी ऑडियंस के लिए नहीं, बस अपने लिए। एंड द सॉन्ग समहाउ मेड इट टू अंकुर तिवारी, जो उस वक्त गली बॉय के म्यूजिक को सुपरवाइज कर रहे थे। एक मेल गया, एक मीटिंग हुई, एंड दैट सॉन्ग मेड इट टू द बिगेस्ट मूवी अबाउट एक्चुअल हिप हॉप। तो ने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज हैज कम आउट ऑफ द कल्चर। डब शर्मा डिवाइन का गाना, गाने का नाम है आजादी। हर बार सुन के गूज़बम्स आ जाते हैं। गाना इंडी टॉप 10 पर, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: ये गाना सुनने के बाद हाथ अपने आप सर पे चला जाता है. मैड रिस्पेक्ट टू डिवाइन फॉर दिस सॉन्ग, वन ऑफ द टॉप 5 सॉन्ग्स इन देसी हिप हॉप. एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड क्विकली इस इंडी पॉप क्विज का आंसर करो. डिवाइन एंड करण औजला ने एक कोलैब करके एक एल्बम रिलीज करी थी आज से 2 साल पहले. जल्दी बताओ उस एल्बम का नाम क्या है. काउंटडाउन का अगले वाला गाना अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 7 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath on Mirchi.

0: आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां की आवाज में एक गाने का नाम है ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, इस हफ्ते भी दो पोजीशन ऊपर जम करके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। कुछ गाने इस हफ्ते हॉट होते हैं, अगले हफ्ते नहीं, बट कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं एक एड्रेस बन जाते हैं हमारे लिए, एड्रेस टू अ मेमोरी, अ ट्रिप टू नॉस्टैल्जिया। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना।
0: एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

गाने का नाम है मायरी, साल 2000, एल्बम फिर धूम पलाश था इनकी आवाज में। जरा याद कीजिए यार वो जमाना, कैसेट की रील पेंसिल से घुमाना, इंतजार करते रहना कि मेरे वाला गाना आएगा। आई रिमेम्बर आई वॉज ऑब्वियसली इन स्कूल जब मैंने गाना सुनना शुरू किया था, बहुत अच्छी धुन लगती थी। एंड दैट लाइन, दैट बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलके मायरी, शायद मैं इतनी छोटी थी दैट मैंने उसका मतलब ही नहीं समझा, एंड मैं बस बहुत इतराती थी ये गाना सुन के, सजती थी सवरती थी। एंड एज वी कीप ग्रोइंग अप वो गाने समझ में आने लगते हैं, उनके पीछे के मतलब बदलते जाते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे मायरी में वो अपनी माँ से ये कहानी बता रहे हैं ये भी नहीं समझ में आया था, लेकिन नाउ इट ऑल साउंड सो ब्यूटिफुल दैट वो जिस लड़की की तारीफें कर रहे हैं, जिस लड़की के बारे में बता रहे हैं, जिसकी याद उन्हें आ रही है, वो अपनी माँ को बता रहे हैं। पर यही तो बात है, गाना नहीं बदला यार, हम बदल गए। गाना 1998 में बना था, फ्रंट मैन पलाश सेन की आवाज, यूफोरिया द बैंड, जिसने आज भी ऑलमोस्ट आफ्टर 45 इयर्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कभी कोई फिल्म का गाना नहीं किया। द रियल ओजी पोस्टर बॉयज ऑफ पॉप म्यूजिक, अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, यूफोरिया द बैंड का गाना, गाने का नाम है मायरी, इज योर टिकट टू नॉस्टैल्जिया टुडे ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: आई स्वेयर गाने आर लाइक मेमोरीज जो हमें ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. आई वॉज टेकन बैक टू माई चाइल्ड हुड होम बाई लिसनिंग टू दिस सॉन्ग. पलाश सेन की आवाज में यूफोरिया द बैंड का गाना मायरी स्टिल हिट्स होम एग्जैक्टली हाउ इट यूज टू 10 years बैक और 20 years बैक. And that's why it's a classic. At RJ Kanega on Instagram par aao, koi bhi gaana from the 90s, 2000s, jo aaj bhi aapko lagta it hits home, buddy. Mujhse aage share karo. Main aur Ashkai, my sound producer, hum aapke recommendations ko bahut seriously lete hain. We might feature your song next week. Now back to the countdown. Agle wale gaane ki bari. Gaane ka naam hai Dealer. Diljit Dosanjh ki awaaz, unhi ki composition. 18 hafton se is countdown par barkarar. Dealer is playing right next for you on Gaana number 3. You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
1: Number 3.

0: Rihanna Indie Top 10 Kanika Kasat on Mirchi.
1: Mirchi sun rahe aap, bandi ka naam hai RJ Kanika, show ka naam hai Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री थी, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक था. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं. इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक. लेकिन एक क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप. जसलीन रॉयल बादशाह का गाना इनाम वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. फिर एक नई नवेली एंट्री, ज़ारा खान स्केल्स का गाना मूव बॉडी ऑन गाना नंबर 9. संजू राठौड़ का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 8. हर्ष नुसी का साड़ी सुन पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके इस हफ्ते था ऑन गाना नंबर 7. ऐश किंग का किनिया सोनी गोइंग स्ट्रॉन्ग ऑन गाना नंबर 6. In all honesty, ये गाना इस countdown का मेरा favorite गाना है. अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 5. आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खा का ए अजनबी अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग ऑन गाना नंबर 4. दिलजीत दोसांझ का डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 3. The top 2 songs of the week, yet again, वही शफल हो रहा है ऊपर नीचे 17 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन, दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. एंड द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रॉर का गाना, मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा की आवाज में, मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा. पिछले हफ्ते नंबर 2 पर था, 1 पोजीशन ऊपर जम करके इस हफ्ते शीशा इज ऑन गाना नंबर 1. ये दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 2.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: आज मैं नहीं बोलूंगी, आज कोई और बोलेगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक इवेंट में इतनी खूबसूरती से सोनू निगम ने मोहम्मद रफी साहब के बारे में बातें की, वही कॉन्वर्सेशन आज हम सुनेंगे। तो शुरू करते हैं।
1: जिनको मैंने अपना भगवान माना, जिनको मैंने अपना, मेरे पीर ही है वो। मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे लोग किसी को याद करते हैं, कुछ मानते हैं, कोई साईं बाबा को मानता है, मैं मोहम्मद रफी बाबा को मानता हूँ। उनको मैंने वैसे ही प्यार किया, और इनके बारे में मैं इनसे कितना मुतासिर हुआ हूँ, कहाँ कहाँ, ये मेरे ख्याल से मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी सुनने वाले ने मेरे म्यूजिक को सुना है, वो जानता होगा कि मैंने अपने बड़ों से और खास तौर से रफी साहब से कितना इन्फ्लुएंस मैं हुआ हूँ, कितना मैंने उनसे सीखा है, कितना मैंने अपने संगीत में उसे अपनाया है। मेरा जब करियर शुरू हुआ था मुंबई में 1991 में, जब मैं आया था यहाँ पे, तो मैं पहले से ही, हमारे माता और पिता ने हमको रफी साहब से ऐसे मिलवाया था जैसे कोई ये कोई फरिश्ता है, न केवल गाने के बारे में लेकिन एज ए ह्यूमन बींग ऑल्सो। और जितना फिर मैं इंडस्ट्री में आया, मैंने उनके बारे में मेरे बड़ों से सुना, जिन लोगों ने साथ में उनके काम कर रखा था, तो मुझे एहसास हुआ कि ये आदमी तो कुछ अलग ही विलक्षण थे और किसी खास पर्पस से आए थे।
0: ऐसी ही और बातें थोड़ी देर के बाद, राइट हियर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: अब हो।
1: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियां मिर्ची।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियां मिर्ची।

0: सोनू निगम टॉकिंग अबाउट मोहम्मद रफी साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये एक अलग तरह का संगीत है क्योंकि एक चेला जब अपने गुरु के बारे में बात करता है तो वो संगीत ही सुनाई देता है। एक इवेंट में दिल खोल के ऐसे खूबसूरती से सोनू निगम ने मोहम्मद रफी साहब के बारे में बात की, वही बातचीत हम सुन रहे हैं, तो सुनते हैं।
1: एक बहुत बड़ा फर्क जो रफी साहब लेकर आए गायकी में, क्योंकि ये मत भूलिए कि उस समय पार्श्व गायकी नई नई आई थी। हमारे पास तो रेफरेंस पॉइंट बहुत सारे हैं, हम सुनने के लिए हमारे पास में कैसेट सीडीज थे, अब यूट्यूब में जो चाहे सुन लेते हम लोग। इन लोग के पास में रेफरेंस पॉइंट नहीं था, तो ये जो किया ये इनको आमद आई है कि कैसे फूल को फूल की तरह बोलना है, जोश को जोश की तरह बोलना है। देश का गाना गाना है तो देश की बात आनी चाहिए, और प्यार का गाना गाना है तो प्यार की बात आनी चाहिए, गजल गा रहे हैं तो गजल का ठहराव आना चाहिए। तो ये बंदे अलग ही थे, ये शायद क्योंकि ये इतने सच्चे थे अंदर से, ये कोई भी गाने को गाते थे तो ये उसमें मिल जाते थे, द सॉन्ग बिकेम द सिंगर, ऐसे हो जाता था।
0: हाउ ब्यूटिफुल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियां मिर्ची।
1: दीवाना

0: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियां मिर्ची।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियां मिर्ची।

मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियां मिर्ची। मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियां मिर्ची।

0: एक बहुत ही खूबसूरत गाने में मोहम्मद रफी साहब की गायकी को कैसे एक्सप्लेन किया सोनू निगम ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक इवेंट में उन्होंने ये शेयर किया था, सुनिए।
1: उनका गाना है

0: कैसे किसी को याद सताती है यार, तेरी बहुत याद आ रही थी यार, अब उसको कैसे हम कन्वे करेंगे। तू तो ना आए, तेरी याद सताए। इसके थर्ड अंदर में एक लाइन आती है, तुम मुझसे मैं खुद से परेशान। आपको लगेगा कि मतलब बहुत परेशान है आदमी है बहुत।
1: भाई गाना तो सुंदर है ही, जिस तरह से सोनू निगम ने एक्सप्लेन किया ये और सुंदर लग रहा है सोच के। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: रफी साहब की आवाज कैसे इवॉल्व हुई इन इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सोनू निगम इस बारे में क्या सोचते हैं, सुनिए एक इवेंट में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: रफी साहब का जो रेपर्टोर रहा है ये एक अपने आप में यूनिवर्सिटी है। एवरी टाइम यू विजिट रफी साहब यू विल लर्न समथिंग न्यू। अब ये जब नए नए आए थे उस समय जब ये मैं जिंदगी में हर दम रोता ही, कड़क आवाज में कह रहे वो, रोता ही रहा हूं आ ये आवाज की, सोहा सुहानी रात ढल चुके। इसके बाद में इन्होंने आवाज में सॉफ्टनेस लाने का प्रयास किया क्योंकि आवाज तगड़ी थी ही इनकी, रियाजी गला था और उनकी जो पहले के रेफरेंस पॉइंट थे सैगल साहब वगैरह सबकी आवाजें बहुत बड़ी थी आवाजें, तो ये भी तगड़ी आवाज लेकर आए थे। बट इनको खयाम साहब ने या अनिल बिस्वाज किसी ने कहा इनको कि जैसे तरत महमूद जी की आवाज में एक सॉफ्टनेस है वो आप करो। रफी साहब ने इस पे सोच कर काम किया और जब वो काम किया तो ऐसा काम किया कि
0: बस कमाल ही कर दिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर Only on Mirchi.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
3: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर।

0: एक इवेंट में सोनू निगम ने मोहम्मद रफी साहब के बारे में बहुत खूबसूरत बातें की। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू, आपके साथ उनके गाने डिस्क्राइब किए, वही बातें आज हम सुन रहे हैं, तो थोड़ी और सुनते हैं।
1: ये गाना है इनका, ये गाना LP का फर्स्ट गाना था इन्होंने गाया था, और ये लक्ष्मी का प्यारेलाल के गाने को जब उन्होंने गाया तो उन्होंने जो पैसे दिए, उन्होंने वो पैसे लिए और उसको वापस दे दिए और बोला आधे तुम रख लो और आधे तुम रख लो, लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल। वो गाना था

0: नाज नाज को दिखाना है, तुझे नाज हो तेरे प्यार में।
1: वह लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का एक और खूबसूरत कॉम्पोजिशन संग बाय मोहम्मद रफी राइट हियर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियां मिर्ची,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियां मिर्ची।

0: मोहम्मद रफी साहब की आवाज कैसे हर एक्टर पे सूट कर जाती थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए इस बात को एक इवेंट में सोनू निगम ने कितनी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया था।
1: अब यही बंदा गा रहा है हम काले

0: लगता है कि महमूद ही कर रहा है
1: और ये आदमी कर रहा है, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आ जा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे
0: ये कैसा सिंगर है कि ये आदमी की आवाज दिलीप कुमार भी शूट कर रही है, जॉनी वॉकर भी शूट कर रही है, महमूद भी शूट कर रही है, और मतलब और ऋषि कपूर पे भी शूट कर रही है।
2: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है, यही बात है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची

0: एक इवेंट में सोनू निगम ने रफी साहब के बारे में क्या कमाल की बातें की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वही बातें आज हम सुन रहे हैं, तो थोड़ी सी और सुनते हैं।
1: बहुत कमाल की मैं बताता हूँ। देखो सिंगर का क्या होता है, कंपोजर को बाईपास करना पड़ता है। ये सुनिए आपको, अभी गाना है,
2: वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये सैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा।
1: है ना, तो ये एस जी वर्मा साहब की आवाज ये है। तो सिखाए कैसे होंगे गाने,
2: तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहां भी ले जाए राहे हम संग है।
1: तो उसको गर्मी समय कैसे गाया, तेरे

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।

0: सोनू निगम को मोहम्मद रफी साहब के बारे में बातें करते हुए सुनना अपने आप में एक संगीत है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक इवेंट में उन्होंने रफी साहब के बारे में बहुत सारी बातें की, वही बातें हम सुन रहे हैं, तो थोड़ी सी और सुनते हैं।
1: मैंने शुरुआत में अपने करियर की, क्योंकि हम दिल्ली में थे तो दिल्ली में तो और कोई जरिया नहीं था उस समय, तो शोज सिर्फ ऐसे होते थे, शादियों के शोज या बर्थडे के शोज ऐसे। तो मैंने बचपन में बहुत सारे ऐसे शोज कर रखे हैं। मैं बड़ा हैरान होता कि अगर दुल्हन आ रही है, बहारो फूल बरसाओ, किसी के बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, देशभक्ति का है, लाइन लगे पड़े रफी साहब के, मतलब कोई भी है ना, कुछ भी हो, रफी साहब के ही गाने बजते थे। शराबी अगर लोग डांस कर रहे हैं तो मुझे दुनिया वालो शराब छलकाए जाम, तो शराबी बड़े खुश हो रहे हैं, डांस हो रहे हैं, आए तो रफी साहब के गाने ही होते थे हर मौके पे, हर अवसर पे वो जो गाने चुने जाते थे।
0: बहुत ही सुंदर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: मोहम्मद रफी की बातें और उनके गाने मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, लेकिन ये बातें हम सोनू निगम की कही हुई सुन रहे हैं जो एक इवेंट में उन्होंने शेयर की थी। सुनिए।
1: नॉर्मली क्या होता है कि कोई गाने को जितना इनसिक्योर आदमी गाता है ना, वो ज्यादा हरकत दिखाता है, और जिसको अपने काम पे सिक्योरिटी होती है, श्योरिटी होती है, वो हरकत लेगा लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि अरे ले भी लिया, ये कब हुआ। तो ये गाना है, हुई

0: सवाला, हरकत ये होती है सवाला गया।
1: तो ऐसी ही सुंदर हरकतों वाला एक और गाना सुन लेते हैं रफी साहब का, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।
1: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।

0: एक इवेंट में सोनू निगम ने मोहम्मद रफी साहब के बारे में इतनी खूबसूरती से बहुत सारी बातें की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वही बातें आज हम सुन रहे हैं, तो थोड़ी सी और सुनते हैं।
1: अच्छा, दुनिया का सबसे फेमस इंडिया का हैप्पी बर्थडे सॉन्ग कौन सा है? मोहम्मद रफी। कुछ छोड़ा ही है, देशभक्ति इन्होंने गा रखे, भजन इन्होंने गा रखे हैं, कवाली इन्होंने गा रखी है, राखी के भी गाने गा रहे हैं, सैड सॉन्ग इन्होंने गा रखे हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स ये गा चुके हैं, ऊंची आवाज ये गा चुके हैं, गजल ये गा चुके हैं, छोड़ा क्या है, लोफर सॉन्ग्स गा चुके हैं। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं किस ओ किस को प्यार करो, कैसे प्यार करो। लगता है कि ये आदमी, ये कौन है आदमी, ये कितना बदमाश होगा, कोई कह सकता है कि ये आदमी से बोलेगा आ जा, ये कोई कह सकता है कि ये आदमी ऐसा होगा? कितनी मस्ती करते आदमी। ये एक ऐसे वॉल्केनो थे जो सिर्फ माइक पे फटते थे, इनके अंदर में सब भरी थी मस्ती, आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर, सब इनको पता होगा, अंदर से सब इनके खुराफात भरी पड़ी होगी, पर वो दिखाते नहीं होंगे, वो गाने में उसको अभिव्यक्त करते थे। सो दैट इज द ग्रेट मोहम्मद रफी साहब।
0: हाउ ब्यूटीफुल, सोनू निगम की बातें भी और मोहम्मद रफी साहब के गाने भी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियां मिर्ची।
1: ये जो चिलमन है

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: Mirchi, fresh maal.
2: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बुजुर्गों की सेवा में कंपैशन क्यों सबसे ज्यादा जरूरी होता है जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये तो आपने बहुत खूबसूरत बात कही और ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है इस एज में बहुत लोग इसको इमोशनल ड्रामा की तरह भी यूज करते हैं। ड्रामा एक शब्द है जो मैं अपने फ्रेंड से लेके आया। वो कहते हैं यार कुछ भी बोलो मम्मी जी को, वो कहते हैं हाँ भैया मैं तो मर जाऊंगी, तुम मेरे मरने का इंतजार कर रही हो। वो कहते हैं यार इतने टॉन्ट की तो जरूरत भी नहीं थी, मैं तो सेवा ही कर रही हूँ, हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां होंगी, आप प्यार से बोल दो। बोलते जब मैं सेवा कर रही हूँ और सब कोई लगे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि व्हाई एम आई गेटिंग ऑल दिस ट्रीटमेंट, तो वो बहुत परेशान रहती है। तो इस उम्र में आके बहुत लोग नेगेटिविटी नहीं, बहुत मे बी इरिटेबल है, बीमार है, पता नहीं क्या, बीमार भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बस तुम तो मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो, और वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, मैं तो चाहती हूँ आप जिए।
4: इट इज ओके, वो अपने दर्द में, देखो जो दर्द वाला होता है ना वो दर्द ही देता है। समटाइम्स यू नो व्हेन पीपल आर सेइंग ऑल दीस स्टेटमेंट्स, उनको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ देयर, जो उनके अंदर में दर्द होता है उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो उसको इतना पर्सनली नहीं लेना चाहिए। जो हम बोल रहे होते हैं ना वो हमारे अंदर की मन की स्थिति का रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर कोई बहुत दर्द में है तो फिर वो ऐसी बातें, देखो ये तो वो ये कह रहे हैं हाँ तो मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो। कभी कभी तो माँ अपने बच्चे को नहीं कहीं बार बहुत स्ट्रांगली कहीं बार गुस्से में कह देती है तो पैदा होते ही मर जाता। हाँ, ऐसे
3: बिल्कुल
4: बहुत वेज एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मुख से निकल जाते हैं, हम कहते हैं क्या बोल रहे हो, शुभ शुभ बोलो, कुछ नहीं है, वो दर्द में है। कौन, कोई भी माँ थोड़ी ना चाहती कि वो पैदा होते ही मर जाता, पर कभी कभी जब वो बहुत दर्द में होती है उसके मुख से ऐसा निकल जाता है। सो जस्ट बी अ लिटिल बिट मोर कंपैशनेट, उनको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद बहुत दर्द में है और वो दर्द कई बार झलक झलक के इन बातों में ऐसी स्टेटमेंट से निकलता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: पॉजिटिव बोलना सिर्फ आदत नहीं, एक जिम्मेदारी क्यों है, समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मेरी मम्मी और मेरे बीच में ऐसा रिश्ता था जहाँ हम एक दूसरे को ये कहते थे, तो मम्मी मेरे को कभी कभी कहती थी जब मैं मर जाऊंगी तब तुमको याद आएगी। फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि अब तो याद आती है उनकी नेचुरली बहुत, पर हमने उसको जोक में लेना शुरू कर दिया। तो जब भी वो ऐसी बात बोलती है मैं बोलता, तो एक दूसरे को देख के फिर हम हंसने लगते कि क्या बात कर रहे हैं, तो एक जोक हो गया।
4: फिर भी ऐसे शब्द हम न यूज करें, वर्ड्स की भी एक पावर होती है।
3: बिल्कुल,
4: थॉट्स की भी पावर होती है, वर्ड्स की भी पावर होती है। हमारे यहाँ तो हमेशा कहते हैं ना शुभ शुभ बोलो, तो शुभ शुभ सोचो, सोचने से पहले भी सोचो, सोचने से पहले भी बोलो। ऐसे वर्ड्स हम न ही यूज करें तो अच्छा है, इसलिए हमारे तो क्या कहेंगे, कोई भी होगा ना कहेंगे लंबी आयु हो, जुग जुग जियो, इस तरह से वरदान। मतलब वर्ड्स में भी वो एनर्जी रखते हैं कि आपकी लंबी लाइफ हो।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्यों कुछ लोगों को ये डर होता है कि उनके जाने के बाद उन्हें भुला दिया जाएगा, जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक सिस्टर, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एक फिल्म आई थी कोको कुछ सालों पहले, उसमें बहुत खूबसूरत चीज का वर्णन था कि बहुत बार इंसान को इस चीज की दिक्कत नहीं होती कि हम मरने वाले हैं, उनको इस बात की दिक्कत होती है कि हम ये सब भूल जाएंगे। और ये जो थॉट है कि यार नोबडी विल रिमेम्बर मी, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे कार्य करना चाहते हैं जिसके कारण, और हम भी कहते हैं ना कि भाई काम ऐसा करो कि लोग तुम्हें याद रखें, कुछ ऐसा करो जिंदगी में कि मतलब तुमने ऐसा कुछ तोड़फोड़ कर दिया कि पीपल विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट यू।
4: व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ पीपल फॉरगेट यू? जस्ट टू थिंक अबाउट इट, एक बारी इसमें इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम है कि आपने एक अच्छी जीवन जी और आप चले गए, अब पीछे वाले अगर इफ यू टच्ड पीपल इन सम वे, कभी ना कभी आपको याद करेंगे, दिल से दुआ भी देंगे, पर ऐसा मुझे कुछ करके जाना है जो वो हमेशा मुझे याद रखे। मैंने अगर कोई हमें भूल जाता है तो इसमें इतना क्या बड़ी प्रॉब्लम। If we lived our life well, we enjoyed well, and then we moved on. और अगर वो पीछे वाले भूल भी गए तो क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों ऐसा माइंडसेट है? इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्यों है कि उनको हमें याद रखना है और हम ऐसा कुछ करें कि सारे सब हमें याद रखे? भाई इट इज मोर इम्पोर्टेंट, आपने अपनी जर्नी पीसफुली जी, आपने किसी को दुख नहीं दिया, आपने किसी का नुकसान नहीं किया, आपने एक बहुत एथिकल मॉरल जीवन जिया, आप बहुत पीसफुल कंटेंट थे, अपने तरीके से जिया। इवन इफ यू आर नॉट वेरी फेमस, एक दिन आया आप चले गए, यू लिव्ड योर लाइफ वेल, पीपल अराउंड यू व्हेन दे थिंक ऑफ यू दे थिंक वेल ऑफ यू, इज इट? डोंट यू थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट?
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हमारी जिंदगी का असली पर्पस क्या है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: इन अक्सर जो जिंदगी जी रहा होता है उसका मकसद यही होता है कि कुछ तो ऐसा करूं कि लोग मुझे याद रखें, वरना मेरा जीवन है वो बेकार सा हो गया। नहीं,
4: जीवन का पर्पस क्या है? बेकार हम कह तो रहे हैं, पर मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? व्हाट यू वांट इन लाइफ? लोग भी आपको क्यों याद रखें, उससे क्या होगा?
3: पता नहीं क्या होगा, बट कहते हैं ना कि भाई
4: नहीं, सोच लेते हैं ना हम, कहते हैं वो हम जाएं तो वी लीव अ मार्क, वो हमें याद रखे। हाँ। क्यों क्यों मना, क्या होगा उससे?
3: जब आप जी रहे हैं तो जिंदगी में इम्पैक्ट करें किसी के, हम लोगों में खुशियां बांट सके, उनकी जिंदगी में कोई ऐसा काम करें कि उनकी जिंदगी बेहतर हो।
4: इम्पैक्ट करना अच्छी बात है, दैट इज व्हाई आई सेड फेमस होना जरूरी नहीं है,
3: इम्पैक्टफुल होना जरूरी है।
4: इम्पैक्टफुल तो होना, इम्पैक्टफुल तो क्या है, जो अगर हमने अगर इतना भी केयरफुली अपना जीवन जिया कि किसी को दुख नहीं दिया, सो डोंट यू थिंक यू लेड अ वेरी वेरी इम्पैक्टफुल लाइफ, कि जब वो आपको याद करते हैं तो कहते हैं अच्छे इंसान थे।
3: हाँ।
4: मैं जब उनसे मिला मुझे बड़ा अच्छा लगा।
3: हाँ।
4: उनसे मिल करके बहुत अच्छा लगता था,
3: वो ही काफी
4: तो
3: है।
4: वो भी बहुत अच्छी बात है, आपने एक बहुत इम्पैक्टफुल लाइफ जी, आपने एक बहुत लेगेसी छोड़ी, यू लेफ्ट अ कंपनी बिहाइंड, इतने इतने करोड़, इतना सब कुछ, एवरीथिंग, बट व्हेन दे थिंक अबाउट यू, अरे वो तो ऐसे
3: बेकार इंसान थे, वो अच्छी बात
4: या बहुत गुस्से वाले थे, या बहुत कंट्रोलिंग थे, या बहुत डोमिनेटिंग थे, तो क्या इम्पैक्ट आपने डाला? इम्पैक्टिंग लाइफ मींस यू रियली ब्रॉट समथिंग इन देयर लाइफ ना, चाहे खुशी, चाहे अपलिफ्टमेंट, एम्पावरमेंट, आई थिंक वो एक लेगेसी होती है।
3: बिल्कुल,
4: हाउ मेनी पीपल यू रियली इम्पैक्टेड इन अ पॉजिटिव मैनर,
3: जब आप सोचें तो आप उनके बारे में खुश होकर सोचें। फ्रांस,
4: मैं रियली ये समझती हूँ कि ये प्रेशर अपने पर नहीं
3: डालें, नहीं लेना चाहिए।
4: ये मत प्रेशर डालें कि हम कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग हमें याद करें, इस ऐसे प्रेशर से नहीं जीवन जीना चाहिए, खुशी से जिए, कंटेंटेड हो, सुख दे।
3: क्या बात,
4: अगर इतना भी स्लोगन याद रहे ना, न दुख देना है, न दुख लेना है, सुख देना है और सुख लेना है, बहुत बढ़िया जीवन है, बहुत इम्पैक्टफुल है, और बहुत कम लोग ही ये कर पाते हैं।
3: बहुत खूबसूरत बात कही आपने, एंड आई थिंक दैट शुड बी द मूल ऑफ लिविंग लाइफ।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: थॉट्स और फीलिंग्स का पॉजिटिव होना लाइफ को डायरेक्शन क्यों देता है, समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: और एक और खूबसूरत बात मुझे याद आई, फ्रांस काफ्का जो है बहुत बड़े ऑथर हैं, बहुत कमाल की किताबें लिखी हैं, उन्होंने कहा कि एनीवन हु हैज द एबिलिटी टू सी ब्यूटी इन एवरीथिंग नेवर ग्रोज ओल्ड। वो कभी बूढ़े होंगे नहीं, क्योंकि हर चीज में उनको खूबसूरती दिखती है, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो किताब हो। तो आई थिंक अगर हम अपनी जिंदगी ऐसे जी सकें कि हर चीज में हमको ब्यूटी नजर आए, तो वी विल नेवर ग्रो ओल्ड।
4: इनर वर्ल्ड अगर अच्छा है ना, इनर वर्ल्ड में आपके थॉट, आपका फीलिंग, आपका एटीट्यूड, आपका पर्सपेक्टिव, इनर भी तो एक बहुत दुनिया है ना, उनके बाहर की दुनिया। ये जो इतना लोनलीनेस, खालीपन, अकेलापन, की इनर वर्ल्ड जो है वो बहुत क्योटिक है। अगर आपकी सोच ब्यूटीफुल है, आपकी पर्सपेक्टिव जो आपने कहा, यू कैन सी ब्यूटी इन एवरीथिंग, आपका एटीट्यूड के अंदर पॉजिटिव है, आपकी फीलिंग्स के अंदर प्योरिटी है, एज तो कोई मतलब ही नहीं है। यू कैन रियली फील फुल एनी एज में, आप एंजॉय कर सकते हैं।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके ज्वेल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
2: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
1: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
5: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक। They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
6: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Physical beauty, life ka center kyun nahi hona chahiye? Physical beauty, life ka center kyun nahi hona chahiye? Jante hain.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक्चुअली एज को कहीं ना हम फिजिकल ब्यूटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे शुरू में आपने कहा कि हम कैसे दिख रहे हैं, वो सडनली बहुत इम्पोर्टेंट हो गया कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के कारण, जो भी हो। मुझे याद है कई साल पहले मैं एक बहुत खूबसूरत महिला, बहुत अच्छी दोस्त है, उनसे मिला और शी वॉज ऑब्सेस्ड अबाउट हर लुक्स। अब शी इज गॉन टू स्पिरिचुअलिटी, वो इतना नहीं सोचती है, लेकिन मुझे याद है पहली बार ये शब्द मैंने सुना था, ये फ्रेज मैंने, इसके पहले मैंने कभी सुना था। शी सेड आई हैव गॉट क्रोज फीट, तो मैं उसके पैर की तरफ देखने लग गया। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे पैर तो ठीक ही लग रहे हैं। कहते नहीं, ये देखो मेरे आंखों के आसपास ये क्रोज फीट हो गया। तो पहली बार मुझे समझ में क्रोज फीट क्या होता है। मैंने कहा ये तो पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन तो क्या हुआ, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। वो कहते नहीं ये नहीं है, सही नहीं है, मुझे ये क्रीम लगाना पड़ेगा, वो क्रीम लगाना पड़ेगा। और इत्तेफाकन कुछ दिनों बाद में उससे मिल रहा था, किताब पढ़ रहा था, और वहां पे एक बहुत खूबसूरत लाइन थी, तो मैंने उसे कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ट्विंकल इन योर रिंकल। और जब भी हम मिलते हैं हम इस लाइन के बारे में बात करते हैं और हम बहुत हंसते हैं, और कि झुर्रियां तो पड़ेंगी, ये तो बहुत ऑब्वियस है, लेकिन अगर हम वो झुर्रियां जो हैं, वो कहते हैं स्माइल्स रिंकल्स आल्सो रीच वेयर योर स्माइल्स हैव ऑलरेडी। अगर हम ये बात हंसी खुशी में अपनी जिंदगी बिता दें तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
4: लाफ्टर लाइंस पे बोलते हैं,
3: लाफ्टर लाइंस, हाँ, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पड़ेंगी
4: और अच्छी लगती है। आई मीन वो कहते हैं माथे पे लाइन नहीं होनी चाहिए,
3: शिकन नहीं होनी चाहिए,
4: शिकन नहीं होना चाहिए, वो लाइन अच्छी नहीं लगती। पर अगर आपके आंखों के नीचे या चेहरे पे, तो वो तो एक साइन है दैट यू हैव लिव्ड योर लाइफ ब्यूटीफुली।
3: हाँ,
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
4: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए AIIMS Education हमेशा आपके साथ है.
5: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding,
6: EKG and phlebotomy,
5: medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
4: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
0: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
7: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक। They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: It's 7:30 AM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आगे बढ़ने के कौन से पहलू वाकई खूबसूरत होते हैं समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो बीच वाले एज में होते हैं, ना ज्यादा यंग हैं ना ज्यादा ओल्ड हैं, उनको ज्यादा दिक्कत होती है कि यार हम बुढ़े हो रहे हैं। बट बुढ़ापा जो है वो एक तो हमने डिस्कस किया मन में होता है, और इंग्रिड बर्गमन जो है वो बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस थी, वो कहती हैं कि ग्रोइंग ओल्ड इज लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन, यू गेट आउट ऑफ ब्रेथ बट द व्यू इज आउटस्टैंडिंग।
4: एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाई आई सेड व्हाट शी सेड इज सो ब्यूटीफुल, व्यू इज
3: ब्यूटीफुल,
4: दैट इज व्हाई आई सेड कि अगर व्यू ब्यूटीफुल है सो व्हाई वुड यू वांट टू गो बैक।
3: Absolutely.
4: आप mature होते गए, experienced होते गए, you learned, wisdom है आपके अंदर और ज्यादा, वो बचपना नहीं है, तो you suddenly see life so differently. पर वही चीज है ना कि अगर आप उस चीज को accept करें, मुझे लगता है it is also a lot to do with advertisement and social media and the whole buzz जो है ना, मतलब वो भी एक society के thinking को impact करता है। तो अगर हम बार बार यही सुनते रहते हैं कि ऐसा दिखना है, ऐसा दिखना है, यही सब, तो फिर आप वैसे बनने लग जाते हैं। लाइक आई सेड ना, इन्फॉर्मेशन का बहुत इम्पैक्ट होता है।
3: बिल्कुल।
4: तो आप खास हमारे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑब्सेस्ड हैं कि आप कैसे दिखते हैं, वो सारे सम ऑफ दी सोशल मीडिया एप्स लाइक इंस्टा वो बने ही उस पर हैं कि हाउ यू लुक, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लुक, इट्स नॉट अबाउट हाउ यू फील, इट्स अबाउट यू लुक। एंड यू नो फिर उसमें वो दिखाएंगे कि यू हैव दैट स्माइल जब वो फोटो खिंचनी है, एंड द मोमेंट वो फोटो खिंच गई यू आर अगेन सैड। इट्स नॉट अबाउट हाउ यू आर फीलिंग, यू कुड बी फीलिंग मिजरेबल बट यू कैन क्लिक दैट फोटो विद दैट परफेक्ट स्माइल। और इसीलिए अगर हम अपने फोटोज देखें ना इस दुनिया की, तो आपको लगेगा इट्स द हैप्पीएस्ट जनरेशन।
3: जी बिल्कुल,
4: हैप्पीएस्ट जनरेशन। इफ यू कम अक्रॉस एनीबडीज फोटो, आधार कार्ड का फोटो तो कोई नहीं लगाता।
3: सबसे वाहियात फोटो उसी में,
4: जस्ट टू काउंट टू थिंक ऑफ इट, है तो वो भी हमें ना, पर वो तो कोई नहीं लगाता। यू डोंट इवन वांट टू, आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट पे भी दिखाना हो तो आप उसको थोड़ा छिपा के दिखाते कि इस तरह से। बट द होल आइडिया इज कि हाउ यू आर फीलिंग, इट्स नॉट अबाउट जस्ट हाउ यू आर लुकिंग बट इट्स मोर अबाउट हाउ यू आर फीलिंग। एंड दैट इज व्हाई कभी कभी किसी आप बुजुर्ग महिला से भी मिलेंगे, ओल्ड वेमेन ऑल्सो विद ऑल द रिंकल्स विद यू नो, बट यू नो शी मे से समथिंग, वो कॉन्वर्सेशन कई बार हो गया, आप कहेंगे व्हाट अ ब्यूटिफुल वेमेन, शी इज नॉट ब्यूटिफुल फिजिकली बट आपके मुख से निकल जाता है व्हाट अ ब्यूटिफुल वेमेन। वन टाइम देयर वाज अ फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन कुछ साल पहले, एंड जिसमें वो फोटोग्राफी वॉज ऑन ब्यूटी, एंड द वन द फोटोग्राफर हु वन वॉज अबाउट अ बुजुर्ग महिला थी, लेकिन उसने उसकी जो कंटेंटमेंट थी, जो उसकी चेहरे पर स्माइल थी, जो उसकी पीस थी, उसको कैप्चर किया था, एंड उसको प्राइज मिला था ब्यूटी का, कि ब्यूटी इज नॉट जस्ट अबाउट यू नो स्किन एंड द कलर, एंड इट्स मोर अबाउट आप क्या फील कर रहे हैं, वो आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट होता है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: मोहन पाटिल पूछ रहे हैं कि कोई अच्छा काम करने जाता हूं तो सबसे पहले नेगेटिव विचार मन में प्रभाव डालते हैं। इन नेगेटिव विचार को मैं कैसे नष्ट कर सकता हूं?
3: ट्रांसफॉर्म करते हैं उनको। नेगेटिव सोचने की आदत पड़ गई है, एनवायरनमेंट भी कई बार उसमें कंट्रीब्यूट करता है। आप कुछ नया करने जाते हैं, दो चार कह देते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, जो कर रहे हो वही करते रहो, क्या जरूरत है। तो अपने साथ बैठ करके कहें नहीं, मुझे करना है, बहुत अच्छा होगा, होना ही है। कोई चैलेंज भी आ सकता है पर उसको ओवरकम करेंगे। फेलियर भी हो सकता है पर मन में कोई रिग्रेट तो नहीं रहेगा। मिस्टेक भी हो सकती है तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसे कौन से सफल लोग हैं जिन्होंने भूले नहीं करी या मिस्टेक नहीं करी। सो हैविंग दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ, वो बहुत जरूरी है, फिर आप उस चीज को कर लेंगे।
2: तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर थॉट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सामने से अगर काला भी आ रहा है तो आप सफेद फेंकते रहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
5: शशि वो मैनहट्टन है।
4: मैनहट्टन
6: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी।
5: टैन मतलब वो धूप की छाप।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning. अरे यार उठ जाओ यार, कॉफी बाद में भी बन जाएगी लेकिन पहले थोड़ा सा मूड तो बना ले। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और आज की सुबह अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन मिर्चीदार शो यानी कि मिर्ची मॉर्निंग्स सुबह सुबह वाला अभी शुरू हुआ है। अब चाहे तुम ऑफिस के लिए ट्रैफिक में हो या फिर ट्रेन पकड़ रहे हो या फिर घर से वर्क फ्रॉम होम के नाम पर पजामा फैशन वीक चला रहे हो या फिर सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट बना रहे हो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ रहने वाले अगले कुछ घंटों के लिए और आज भी तुम्हारे लिए होने वाली है मेरे पास ढेर सारे बॉलीवुड की गॉसिप्स, ढेर सारी ऑफिस पैंट्री से ज्यादा गर्मा गर्म गॉसिप्स, फन स्टोरीज एंड मिर्ची की वाइब्स एंड साथ साथ में होने वाले कुछ मिर्चीदार बैंगर्स ओनली फॉर यू। ये सब कुछ होने वाला है इस मॉर्निंग शो में जिसका नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। तो कभी ट्रैफिक, कभी ट्यून्स, कभी तवा, कभी टैब्स और कभी टिफिन, इन सबके बीच में थोड़े से हिट्स भी मैं तुम्हारे लिए प्ले करने वाली हूँ। नाम है मेरा प्रिसिला, मुझसे बातें कर सकते हो ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी के लिए गुड मॉर्निंग है जी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस.

0: and grooms ki sherwanis.
1: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Islip.
2: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islip, New Jersey. Conditions apply.
3: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.
9: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Her drive banegi yaadgar.
10: Mirchi. Fresh maal.
11: Explosive vibe aur power packed energy ka dose.

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और टाइम हो चुका है देखने का कि आज के दिन पुराने टाइम में क्या हुआ था। सबसे पहले चलते हैं 1498 में, जब एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार ट्रिनिडाड आइलैंड देखा था। फिर आते हैं 1658 में, औरंगजेब ने खुद को मुगल एम्परर डिक्लेयर किया था, मतलब सेल्फ प्रमोशन का कॉन्सेप्ट वहां से शुरू हुआ था। 1933 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया था और सिर्फ 7 साल बाद 1940 में एक ऐसा नाम जिसने हिस्ट्री में अपनी अलग ही जगह बनाई थी, शहीद उधम सिंह जी, लंदन की पेंटरविल प्रिजन में उन्हें फांसी दी गई थी। आफ्टर ही असैसिनेटेड माइकल ओ'डॉयर, द फॉर्मर पंजाब लेफ्टिनेंट गवर्नर इन रिवेंज फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर, उनकी कहानी आज भी हिम्मत और बलिदान की मिसाल मानी जाती है। फास्ट फॉरवर्ड टू 1971, अपोलो 15 के एस्ट्रोनॉट ने मून पर पहली बार लूनर रोवर चलाया, मतलब मून पर लोग जाकर ड्राइव कर रहे हैं और यहाँ पर रोड्स पर पॉटहोल से हम अभी भी नेगोशिएट कर रहे हैं। और 1991 में अमेरिका और सोवियत यूनियन ने स्टार्ट वन ट्रीटी साइन किया न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने के लिए। कभी कभी दुनिया को थोड़ा सा काम डाउन होना पड़ता है और ऐसे कुछ फैक्ट्स तुम्हें अगर पता है हिस्ट्री के बारे में तो तुम शेयर कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओकरी रोड, इजलिन।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: Inefficient.
6: Very complex.
7: Clumsy or
6: confusion ही confusion.
3: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक. Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, Mirchi Morning to you. Mirchi Mornings पर मैं बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ में हूँ और अब स्पोर्ट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट शर्मिला धनकर ने एक हार्ट ब्रेकिंग चैप्टर शेयर किया है. उन्होंने बताया है कि उनकी पहली शादी सिर्फ 18 इयर्स की उम्र में हो गई थी, जहां उन्हें बार बार डाउरी के लिए और दो बेटियों की मां बनने के लिए अब्यूज किया जाता था. उन्होंने एक बड़ा ही हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट शेयर करते हुए बताया कि जो उनके फर्स्ट हस्बैंड थे, उन्होंने रात को 11 बजे से सुबह के 3 बजे तक उन्हें असॉल्ट किया और फिर उनको घर से बाहर निकाल दिया. उस रात के बाद वो कभी भी वापस अपने इन लॉज के घर नहीं गई और फिर अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करने की उन्होंने ठानी. एंड आज वो कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट बन गई है. कभी कभी लाइफ हमें बहुत बुरे चैप्टर्स दिखाती है और हमें लगता है कि हमारा गेम ओवर हो चुका है, मतलब लाइफ में हम हार चुके हैं. लेकिन एक्चुअली लाइफ उस टाइम तुमसे एक्सपेक्ट कर रही होती कि तुम स्ट्रेंथ दिखाओ, अनवेवरिंग स्ट्रेंथ दिखाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी कहानी चेंज करनी है. दीज बैड चैप्टर्स आर नॉट योर स्टोरी. और मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ये बैड चैप्टर्स कभी कभी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं. बिकॉज जितना बड़ा विलन होगा तुम्हारी लाइफ में, उतने ही बड़े सुपर हीरो बनकर तुम सामने आओगे, है ना. और इसी बात पर बजाती हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ मिर्चीदार बैंगर्स. जब तक तुम जाकर मुझसे बातें करो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, मेरे हैंडल है मिर्ची प्रिज, दैट इज MIRCHIPRIS, दैट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
1: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Iselin।
4: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज का वेदर ना उस दोस्त की तरह है जो दिखने में बड़ा ही इनोसेंट है लेकिन एक्चुअली बड़ा उस टाइप का है। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और मिर्ची मॉर्निंग्स पर। चलो देखते हैं कि आज हमारा थर्मोस्टैट किस मूड में है। अभी बाहर 68 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर हो रहा है, स्काई जो है काफी हद तक क्लियर है। गुड न्यूज ये है कि अगले 24 आवर्स में देर इज 0 मिलीमीटर्स का रेन प्रिडिक्टेड। सो अम्ब्रेला को आज वर्क फ्रॉम होम करने दो। कल थोड़ी सी बारिश हुई थी सिर्फ 3 मिलीमीटर्स की, मतलब जमीन ने एक सिप पिया और बारिश बंद हो गई। आज का टेम्परेचर जो है ना वो 66 डिग्री फारेनहाइट से लेकर 85 डिग्री फारेनहाइट के बीच में है, लेकिन ये ध्यान रहे कि फील्स लाइक टेम्परेचर जो है वो 88 डिग्री तक जा सकता है, ऐसा फील हो सकता है। मतलब वेदर जो है वो जैसा है उसे थोड़ा सा हॉट फील हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज का जो हाई है वो कल से काफी ज्यादा है। कल मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचा था 77 डिग्री फारेनहाइट तक और आज जाने वाला है 88 डिग्री फारेनहाइट तक। तो अगर सुबह सुबह हुडी पहनकर बाहर निकले हो तो शाम तक उस हुडी को लेकर घूमना पड़ेगा क्योंकि शाम तक आते आते गर्मी लगेगी। इसीलिए लेयर के प्लेयर बनने को मैं कहती हूँ तुम्हें, और साथ में पानी पीते रहना जरूरी है। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, सनग्लासेस अपने रेडी रखना, साथ में SPF 50++++ वाला सनब्लॉक भी लगाकर बाहर जाना। इट्स अ परफेक्ट डे टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ सनलाइट। साथ में अगर फ्रेंड्स के तुम कॉफी या चाय एंजॉय करना चाहते हो, फैमिली के साथ पिकनिक जाना चाहते हो, इट्स अ गुड डे फॉर दैट। या फिर अकेले यू निकल पड़ना चाहते हो कुछ एरेंड्स रन करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, दैट्स आल्सो अ गुड प्लान। फिलहाल प्लान ये है कि तुम जाकर मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। और मैं जाती हूँ तुम्हारे लिए कुछ मिर्चीदार बैंगर्स प्ले करने, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Around the world की अपडेट्स का टाइम हो चुका है मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स सबसे पहले स्पेन के सेउटा रीजन में ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज देखने को मिला है रिपोर्ट्स के हिसाब से हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स मोस्टली फ्रॉम मोरक्को कोस्ट के थ्रू टेरिटरी में पहुंचे हैं जिसके बाद लोकल अथॉरिटीज ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है ये इशू इमिग्रेशन ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट और बॉर्डर पॉलिसीज को लेकर डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है नवजबर यूएस में पढ़ रहे या पढ़ने का प्लान बना रहे लोगों को ये सुनना बहुत जरूरी है रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रपोज्ड फी कंसिडर कर रहा है जो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि ओपीटी प्रोग्राम से लिंक्ड हो सकती है अगर इम्प्लीमेंट होती है तो ग्रेजुएशन के बाद जॉब सीक करने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मेनी इंडियंस पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है फिलहाल ये प्रपोजल स्टेज में है इसीलिए अपडेट्स का वेट किया जाएगा एंड लास्टली इंडिया में पार्लियामेंट ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पास किया है इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक सेल्फी वीडियो शेयर करके कहा है कि पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा एग्जाम सीजन का सबसे बड़ा विश तो वैसे भी यही होता है कि पेपर्स लीक ना हो बस सबको आंसर्स अच्छे से आते हो एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का थ्री फॉर दिस आवर मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स अभी सुनोगे तो मिर्चीदार बैंगर्स ऑल्सो कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033-647-244. Stay tuned and stay hot.

0: का प्यार।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: सिर्फ हैप्पी फ्रेंडशिप डे कह के काम मत चलाओ। गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन। ज्योत सिन्हा एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टीवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड प्रेजेंट दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0। लाइव बैंड एंड बॉलीवुड सिंगर्स, शायरी और नॉनस्टॉप ओपन डांस फ्लो।
6: एंड द बेस्ट पार्ट, सिर्फ $65 में 3-course डिनर और ढेर सारी मस्ती। फ्राइडे August 7th 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट्स पैलेस, न्यू जर्सी। टिकट्स अवेलेबल ऑन sulekha.com और कॉल 7329972409।
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक। They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और क्रिकेट फैंस, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लो। हमारे यंग बैटिंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी इज मेकिंग सम सीरियस नॉइज। आईसीसी T20I रैंकिंग में उन्होंने एक मैसिव 230 प्लेस का जंप मारकर नंबर 48 तक एंट्री ले ली है और सोशल मीडिया फुल ऑन सेलिब्रेशन मोड में है। उनके फैंस कह रहे हैं नंबर वन तो बस टाइम की बात है। कुछ लोग उन्हें इंडियन क्रिकेट का न्यू ओजी भी बोल रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लड़का जो है ये T20 पर राज कर सकता है। अब फ्यूचर का प्रेडिक्शन तो किसी के पास क्रिस्टल बॉल से नहीं आता है, लेकिन इतना जरूर है कि टैलेंट जब हार्डवर्क से मिलता है तो स्कोरबोर्ड जो है ना वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वाह वाह, क्या लाइन कही है मैंने। एंड ऑनेस्टली हमें तो बस इतना चाहिए कि टीम इंडिया खेले और सिर्फ ट्रॉफीज और कप्स नहीं बल्कि दिल भी जीती रहे। और इसी बात पर एक स्पार्कलिंग रिमाइंडर मैं तुम्हें दे देती हूँ। तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, जहां पर तुमको मिल रहा है 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस। साथ में तुम्हें 0% डिडक्शन भी मिल रहा है अगर तुम ओल्ड गोल्ड जो है वो एक्सचेंज कराते हो। इट हैज टू बी अबव 18 कैरेट्स। ऑफकोर्स इस सब पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है, कहां नहीं होती है लाइफ में। और फिलहाल लेते एक छोटू सा ब्रेक। मिर्ची दार बैंगर्स मैं तुम्हारे लिए प्ले करती हूँ। यू गो एंड चेक आउट माई सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
2: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: सिर्फ हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहके काम मत चलाओ। गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन। ज्योत सिन्हा एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टीवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड प्रेजेंट दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0। लाइव बैंड एंड बॉलीवुड सिंगर्स, शायरी और नॉनस्टॉप ओपन डांस फ्लोर।
5: एंड द बेस्ट पार्ट, सिर्फ $65 में 3-course डिनर और ढेर सारी मस्ती। फ्राइडे August 7th 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट पैलेस, न्यू जर्सी। टिकट्स अवेलेबल ऑन sulekha.com और कॉल 732-997-2409।
0: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
7: लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
8: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: SHG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: A very happy birthday to you. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगर आज 31st of July को तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो तुम अकेले नहीं हो जो आज के दिन सेलिब्रेट कर रहे हो। तुम्हारे साथ बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हैं, उनकी लिस्ट लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। आज है बर्थडे द जेके रोलिंग का, जिन्होंने हमें हैरी पॉटर की मैजिकल दुनिया दी है। और अगर तुमको भी लगता है कि मंडे को डिसअपियर करने वाला स्पेल कहीं मिलना चाहिए तो मुझे भी बता देना प्लीज। और आज बर्थडे है द बिलियनर एंटरप्रेन्योर मार्क क्यूबन का, तो कौन जाने कल तुम्हारा स्टार्टअप चल पड़े और तुम भी बिलियनर बन जाओ। म्यूजिक लवर्स के लिए रैपर लिल उजी वर्ट भी आज ही इस धरती पर प्रकट हुए थे। और अगर प्लेलिस्ट के बिना तुम्हारा दिन स्टार्ट नहीं होता है तो आई हैव गॉट सम अमेजिंग सॉन्ग्स लाइंड अप फॉर यू। सारे के सारे एकदम मिर्चीदार बैंगर्स है। साथ साथ में एक्शन फैंस के लिए वेस्ली स्नाइप्स का भी हैप्पी वाला बर्थडे है। और टीवी लवर्स को याद ही होगा डीन केन, जिन्होंने सुपरमैन का आइकॉनिक रोल प्ले किया था। और पार्टी तब कंप्लीट होती है जब डीजे आ जाता है। हैप्पी बर्थडे टू द लेजेंडरी फैट बॉय स्लिम एज वेल। तो अगर आज तुम्हारा भी हैप्पी बर्थडे है तो मेरी तरफ से एक बड़ा सा हग, लोड्स ऑफ लव एंड दुआ ये है कि अगला साल हेल्थ, हैप्पीनेस और बहुत सारी गुड न्यूज लेकर आए तुम्हारे लिए। और बर्थडे सेल्फीज अपलोड करने के साथ साथ मुझे भेज भी सकते हो, मुझे टैग भी कर सकते हो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, दैट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। एंड व्हाट्सएप कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzilin, New Jersey. Conditions apply.
0: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: और आखिर वो टाइम आ ही गया है जब हम पता करते हैं कि गोल्ड का लेटेस्ट रेट क्या चल रहा है. मेरा नाम है प्रिसिला एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स.
2: राज जोल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,050 $4,050 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं. 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ, बिना किसी हिडन फी ने, बिना किसी इंटरेस्ट के आज गोल्ड का प्राइस लॉक करें. 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, नेचुरल सर्टिफाइड विद लाइफ टाइम वारंटीज. आइए राज ज्वेल्स के साथ आज खूबसूरत सी ज्वेलरी घर लेके जाएं और 9 किश्तों में पैसे दें, बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी हिडन फी के. ज्वेलरी आपके साथ आज घर जाएगी और 9 किश्तों में पैसे हमारे पास आएंगे. सो आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: यू वाइबिंग विद मी बोले तो प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIBRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 4. Stay tuned and stay hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और टाइम हो चुका है मिर्ची आवका 3 का, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले इंडिया में मेटा एक बार फिर से डिस्कशन में है। रिपोर्ट्स के हिसाब से सेंटर ने मेटा के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को दोबारा बुलाया है आफ्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फेसबुक पोस्ट वॉज ब्रीफली रिस्ट्रिक्टेड। गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट पर पॉलिसी और टेक्निकल एक्सप्लेनेशन मांगी है। एंड फाइनली मिडल ईस्ट से एक मेजर अपडेट, रिपोर्ट्स के हिसाब से सऊदी अरेबिया ने रीजनल मिलिट्री एक्शन में अपनी पार्टिसिपेशन अनाउंस की है और सोशल मीडिया पर कुरान की एक वर्स भी शेयर की है और साथ ही ये भी कहा है कि वो एस्केलेशन नहीं चाहते हैं लेकिन अग्रेशन का रिस्पांस देंगे। सिचुएशन फास्ट मूविंग है और डेवलपमेंट्स पर दुनिया की नजर बनी हुई है। और लास्टली इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब वो न्यूयॉर्क विजिट करेंगे उनके साथ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस रहने वाली हैं। ये स्टेटमेंट उन्होंने आईसीसी वारंट और न्यूयॉर्क सिटी मेयर ज़ोरान ममदानी के कमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में दिया है। ये इशू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और लीगल प्रोसेसेस को लेकर काफी डिस्कशन में बना हुआ है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवका 3 फॉर दिस आवर। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, इंस्टा और एक्स पर मुझसे कनेक्ट करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
6: ओह नो,
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
8: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स एंड वेलकम टू राशि जोन का पहला पार्ट, जहाँ पर हम बातें करने वाले हैं एरीज से लेकर वर्ग तक की राशियों की।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी कि मेष राशि, आज या वीकेंड में कोई वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी या सरप्राइज मिल सकती है, शायद उसका असली फायदा बाद में समझ आए। सो पेशेंस इज गोइंग टू बी योर सुपर पावर दिस वीकेंड। लकी कलर फॉर यू इज एमरल्ड ग्रीन, लकी नंबर इज 18। टॉरस यानी कि ऋषभ राशि, ऑप्शंस बहुत हैं, बस सबकी एडवाइस सुनने की जरूरत नहीं है। आज अपनी इनर वॉइस को अपनी लाइफ का सीईओ बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। लकी कलर फॉर यू इज रॉयल ब्लू, लकी नंबर इज 5। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, डे ड्रीमिंग अच्छी बात है लेकिन स्टंट मोड में हमेशा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए लाइफ में, आज तुमको वही करना है। लकी कलर फॉर यू इज कोरल, लकी नंबर इज 27। कैंसर यानी कर्क राशि, सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है भाई, अपने लिमिट्स जानते हो तो उनको रिस्पेक्ट करना भी सीखो, वीकेंड ज्यादा फन रहेगा। लकी कलर फॉर यू इज आइवरी, लकी नंबर इज 11। लियो यानी कि सिंह राशि, लाइफ तुम्हें एक नए डायरेक्शन में ले जा रही है, बॉस चिल मारो, कभी कभी GPS रीराउट करता है और डेस्टिनेशन और बेटर हो जाती है। लकी कलर फॉर यू इज मरून, लकी नंबर इज 33। वर्गो यानी कन्या राशि, ऑफिस गॉसिप आज तुम्हारे आसपास हो सकती है लेकिन सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देना, कार्मा हैज एक्सलेंट मेमोरी, ये याद रखना। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 2। एंड ये था राशि जोन पार्ट 1 मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड लेट मी रिमाइंड यू, राशि में तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन मिलता है, डेस्टिनेशन पर तुम्हें खुद पहुंचना पड़ता है। अभी पहुंचते हैं मिर्चीदार बैंगर्स की तरफ, मिर्ची मॉर्निंग्स पर स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
3: गुड़ की

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzilin, New Jersey. Conditions apply.
5: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
6: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzilin, New Jersey. Conditions apply.
9: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
10: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
9: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है।
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हाँ जी, वेलकम बैक. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और अब हम बातें करने वाले हैं राशियों की.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि, पार्टनरशिप या रिलेशनशिप में आज कूल रहना. गरम चाहे तो ठीक है, गरम टेम्पर नहीं होना चाहिए. लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 14. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, जो काम पेंडिंग है उसे आज ही टैकल करो. एक्शन इंप्रेस करता है, ओवरथिंकिंग डिप्रेस करती है. लकी कलर फॉर यू इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 9. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, हर चीज का एक रीजन होता है. आज कंपैरिजन छोड़ो और अपनी लेन में फुल स्पीड में चलो. लकी कलर इज मस्टर्ड येलो, लकी नंबर इज 21. कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, आज हर चीज को ओवर एनालाइज मत करो. कभी कभी दिमाग नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री बना देते हो यार, चिल मारो. लकी कलर फॉर यू इज ग्रे, लकी नंबर इज 30. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, छोटा काम आज निपटा दो वरना वीकेंड बोलेगा सरप्राइज, मैं तो अभी भी टू डू लिस्ट में पड़ा हुआ हूँ. लकी कलर फॉर यू इज एक्वा ब्लू, लकी नंबर इज 6. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, अगर गलती हो जाए तो एक ऑनेस्ट सॉरी बहुत पावरफुल होता है. स्माइल फ्री है, उसे जेनरसली यूज करना चाहिए. लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 24. And that's it for your Rashi Zone Part 2. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. मुझे अपने साथ ही रखो सोशल मीडिया पर भी. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव फ्री लाइफ साइकिल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने, वो क्या है। ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Iselin.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
11: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची का।
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: एक बात बोलो, गर्मा गर्म चाय और मिर्ची मॉर्निंग्स यूं खत्म हो जाते कि पता ही नहीं चलता है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और बस आज का ये शो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग ट्रैवल अपडेट देकर जाती हूँ तुम्हें। लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक US पासपोर्ट अब दुनिया के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स की लिस्ट में 10th पोजीशन पर आ गया है। ये उसका पिछले 10 सालों का लोएस्ट रैंकिंग है। एक वक्त था जब ये टॉप 5 में कंफर्टेबली ट्रैवल किया करता था, और अब रैंकिंग थोड़ी सी शफल हो गई है। इस लिस्ट में सिंगापुर ने फिर से टॉप स्पॉट होल्ड किया है। मतलब पासपोर्ट्स की भी ये रिपोर्ट कार्ड जो है ना, वो आती है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेकेशन का मूड रैंकिंग से नहीं बल्कि अप्रूव्ड लीव से होता है, और लीव डिसाइड करते हैं तुम्हारे बॉस, चाहे वो घर में हो या बाहर हो। तो अपनी लीव तुम प्लान करो, और अभी मैं यहाँ से लीव कर जाती हूँ। आज साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर ऑफिस ड्राइव, वर्क फ्रॉम होम, या फिर ब्रेकफास्ट बनाते बनाते मुझे सुन रहे थे। यू मेड माई मॉर्निंग्स अ लिटिल मोर मिर्चीदार। यू हैव अ ग्रेट वीकेंड, बी गुड, खाओ पियो ऐश करो, और मिलूंगी तुम्हें अब मैं मंडे को सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय है, और अगर मुझे मिस करोगे तो मुझसे बात कर लेना। इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: हर एक चीज का आखिरी बार तो होता ही होता है, और ऐसे ही वो एक दिन भी आया था हमारी जिंदगी में जब हमने कुछ आखिरी बार किया, और आज ना ऑल ऑफ अ सडन आई कैन थिंक ऑफ दैट डे जब मैंने अब तक आखिरी बार खो खो खेला था।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना,
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirji. हाँ यार, all of a sudden मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैंने लास्ट टाइम खो खो खेला था अब तक, और वो इसलिए याद है क्योंकि हम थोड़े बड़े हो गए थे जब हमने खो खो खेला था। बचपन का टाइम होता तो शायद इतना मुश्किल हो जाता मेरे लिए याद करना कि मैं ना याद कर पाती। एंड ये ना 2015 की बात है, तो 10 साल पहले यानी कि 2015 में दिवाली की छुट्टियों में हम सारे कजिन्स ने प्लान बनाया था कि हम इकट्ठे होंगे, और एक दूसरे को मनाने के बाद जब हम इकट्ठे हुए तो पता नहीं क्यों और कहां से ऑल ऑफ अ सडन खो खो खेलने का प्लान हो गया। एंड माइंड यू, हम सब बड़े हो गए थे तब भी, हाँ मतलब कोई कॉलेज में है, किसी की जॉब नई नई शुरू हुई, ऐसा सारा सबका कुछ ना कुछ यू नो अडल्टिंग शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी वो जो बचपना था ना हमारे अंदर वो नहीं गया था, और हमने खो खो खेला। और मुझे आज भी वो शाम याद है यार, इतने मजे किए थे हमने, इतने मजे किए थे कि बस वो जो शाम है ना वो छपी हुई है मेरे दिल और दिमाग पे। लेकिन वो शायद आखिरी बार इसलिए हो गया क्योंकि हम लोगों ने ना जिंदगी में कदम रखा ही था, सबने कमाई करनी शुरू करी ही थी, अडल्टिंग सबकी शुरू हुई थी, उसके बाद ना सबने लाइफ को बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया, जॉब्स को लेकर इतने नर्वस कि यार अगर छुट्टियां ज्यादा ले ली तो बॉस डांटेगा, काम को लेकर इतने ज्यादा एंक्शियस कि सिर्फ काम में घुसे हुए, अब तो फोन पे बात करने का भी टाइम नहीं है। और ना मैं इनको बुरा नहीं कहूंगी बिकॉज ऑफ द रीजन कि यार होता है शायद ऐसा लाइफ में कि एक वक्त ऐसा आता है कि आप इतने बिजी हो जाते हैं और आपको लगता है कि जॉब्स ही इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जहां पर आपको ये समझ में आ जाता है कि नहीं यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सबसे मिलना रेगुलरली ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो टाइम भी आएगा अगर आपकी जिंदगी में आ जाता है कि नहीं यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सबसे मिलना रेगुलरली ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो टाइम भी आएगा अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ है ना तो आपके लिए भी

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice. Sirf happy friendship day kahe ke kaam mat chalao. Get ready for the ultimate friendship day celebration. Jyot Sinha and Tarun Sharma of Cultivate Talents Unlimited present Dosti Special Jamming Night 1.0. Live band and Bollywood singers, shayari or non-stop open dance floor.
5: And the best part, sirf $65 mein 3-course dinner aur dher sari masti. Friday, August 7th, 7 PM at Royal Albert's Palace, New Jersey. Tickets available on sulekha.com or call 732-997-2409.
6: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा. Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot. Yes.

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: डिबेट्स में प्रोफेसर वायरस ने कहा था कि लोगों को ना सिर्फ नंबर वन याद रह जाता है, बाकी और कुछ याद नहीं रहता, और बात बिल्कुल सही है। तो मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि नंबर वन नहीं यार, जो लास्ट किया था ना, जो लास्ट हुआ था उसे मेमोरी में ताजा किया जाए।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना,
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And you know, मुझे आज जो कुछ moments ऐसे हैं जो last कभी हुए थे, जैसे कि school का वो आखिरी दिन, यानी कि farewell वाला दिन, boards का time था, of course, सब अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे, prep leave चल रही थी, school तो हम जाते नहीं थे, और उसी दौरान farewell का time भी आ जाया करता था, और किसी ने ना इस बात पे ध्यान नहीं दिया था कि हमारे टीचर्स, हमारे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, हमारे जितने भी स्कूल के लोग हैं, सारे के सारे एक छत के नीचे इकट्ठा, ये आखिरी बार हो रहे हैं, इसके बाद नहीं होंगे, किसी ने नहीं सोचा। इतना टेकन फॉर ग्रांटेड था वो दिन, क्योंकि हमारा ध्यान पता है किन सारी चीजों पर था, कि कौन कैसा लग रहा है, और मेहनत भी बहुत की थी यार, ऑफ कोर्स। आई मीन स्पेशली मैंने साड़ी खरीदी थी, जबकि मम्मा के पास पूरा साड़ियों का कलेक्शन है ऑलरेडी, लेकिन फिर मम्मा ने अपनी तरफ से प्यार मोहब्बत से मुझे एक सिल्वर का लॉकेट भी दिलाया था, और स्टूडियो में ले जाकर फोटो खिंचवाई थी। वैसे पार्लर में जाकर तैयार होने का सीन तब तो इतना था नहीं भाई, तो हमारी जो पड़ोस वाली दीदी थी ना, वही आई थी मुझे तैयार करने के लिए। यस, और क्या दिन था वो वाकई में, खाना पीना साड़ी संभालते रहना, एंड देन वो वाला सीन भी आ जाता था, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट स्माइल, और पता नहीं कौन कौन से ऐसे हमें टाइटल्स दिए गए थे, और मुझे ऐसा याद नहीं है कि मुझे कोई टाइटल मिला था, लेकिन बात वही है कि हम इन सारी चीजों में इतना इन्वॉल्व थे कि कहीं वो दिमाग में थॉट ही नहीं आया कि ये आखिरी टाइम है जब हम इस तरीके से मिल रहे हैं, और उसके बाद आई स्वेयर हम कभी ऐसे नहीं मिले, एंड दिस डे बिकेम वन ऑफ दोज लास्ट डेज जो मुझे याद रह गया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको आपके स्कूल का लास्ट डे याद है, तो मुझे डीएम करके बताइएगा और माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी

0: मैथ बोर्ड्स का वो लास्ट वाला पेपर वाला दिन, जब हम इतने खुश हो रहे थे कि ये एग्जाम्स खत्म, स्कूल खत्म, हम ये रियलाइज ही नहीं कर पा रहे थे उस मोमेंट में कि सब कुछ तो खत्म, साथ ही साथ ये रोज मिलना, एक दूसरे को देखना, गॉसिप करना, गप्पे मारना, दिल के छाले फोड़ लेना और दिल हल्का कर लेना, ये भी खत्म।
1: सारा जमाना ए सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा, और वो दिन एक ऐसा दिन है जो आज भी मेरी memories में छपा हुआ है, because of the reason कि यार वो आखरी दिन था जब हमारी पूरी क्लास कॉमर्स सेक्शन जो था वो इकट्ठा था। उसके बाद हम कभी एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिले नहीं, कहीं चार दोस्त मिल जाते हैं, कहीं दो दोस्त मिल जाते हैं, लेकिन पूरी की पूरी क्लास का इकट्ठा होना बहुत मुश्किल हुआ। रियूनियन में भी सब साथ नहीं आ पाते बिकॉज ऑफ द रीजन कि सब अलग अलग शहरों में बस गए हैं, किसी की शादियां हो गई हैं, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां है, तो सब नहीं आ पाते हैं। लेकिन वो दिन मुझे याद है जब हम खुशी मना रहे थे कि आखिरी पेपर है, आखिरी दिन है स्कूल का, ये। मुझे याद है आज भी एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े हुए, भीड़ लगाए हुए, सब के सब हो हल्ला करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे अपनी मेमोरी में, आज मैं आपसे बात कर रही हूं तो। और हमें से काफी सारे लोग जो है अपनी व्हाइट शर्ट्स लेकर गए थे, पहले से डिसाइड कर लिया था हम लोगों ने कि हम अपनी व्हाइट शर्ट्स लेकर आएंगे उस दिन, और मार्कर से सबने उन व्हाइट शर्ट्स के ऊपर मैसेजेस लिखे और लिखवाए एक दूसरे से, एंड दैट्स सच अ क्यूट मोमेंट आई स्टिल रिमेम्बर। मेरे पास आज भी वो व्हाइट शर्ट रखी हुई है जिस पे मेरे क्लासमेट्स के, मेरे दोस्तों के, सबके मैसेजेस हैं। इनफैक्ट उस व्हाइट शर्ट की उस दिन भी इतनी अहमियत नहीं थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, मतलब दिस इज लाइक अ ट्रेंड, ये तो करवाते ही करवाते हैं। लेकिन आज उस सिर्फ एक व्हाइट शर्ट जिसकी अहमियत बढ़ गई उन मैसेजेस की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। वो ढूंढती हूँ कभी कभी तो मैं कि कहीं मिसप्लेस तो नहीं हो गई है और उसको संभाल के रखा हुआ है कि यार ये गायब नहीं होनी चाहिए, भले ही कोई नई शर्ट इधर उधर हो जाए, लेकिन ये पुरानी वाली जिसके ऊपर मार्कर से आड़ी तिरछी लाइनों में मेरे दोस्तों ने, मेरे क्लासमेट्स ने मैसेजेस दिए हुए हैं, ये कहीं नहीं जानी चाहिए, वो ज्यादा प्रेशियस हो गई है मेरे लिए। तो सोचो जरा, हम जिस मोमेंट में थे उस मोमेंट में हम कुछ और फील कर रहे थे विदाउट रियलाइजिंग कि ये मोमेंट अब कभी नहीं आएगा। एंड आई थिंक लाइफ का हर एक मोमेंट कुछ इसी तरीके से, आज भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बचपन की यादों में जाते हुए कि आपको क्या ऐसा कोई मोमेंट याद है कि यार वो लास्ट था, उसके बाद तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। डीएम करिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 12 p.m. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: इंडी टॉप 10
3: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
4: तारीखें भूल जाती हैं, नाम भूल जाते हैं, पर कुछ गाने हमें एक पूरा जमाना याद दिला देते हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। ये वो शो है जहां हफ्ते के हॉटेस्ट टॉप 10 इंडिपेंडेंट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है, सम स्पेशल शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, जसलीन रॉयल बादशाह का गाना इनाम। पिछले हफ्ते से दो पोजिशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक और नंबर 10। उसके बाद नई नवेली एंट्री, ज़ारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी। इस गाने ने डेब्यू किया है ऑन गाना नंबर 9 एंड इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
5: नंबर 9।

0: ज़ारा खान स्केल्स का गाना गाने का नाम है मूव बॉडी, और नई नवेली एंट्री डेब्यू किया है सीधा ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। गाने आर्ट एक तरह से एक टिकट होते हैं टू अ मेमोरी, एंड सम ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माय लाइफ आर ऑफ दोस कॉलेज डेज। ये बात कभी सोची है कि जब हम उस उम्र में थे जब कुछ ज्यादा पता नहीं था तो हम सबसे बहादुर थे। उस उम्र में जो भी बनाया, जो भी सपने देखे, जो भी लिखा, आधा अधूरा या पूरा, उसमें एक चीज थी जो अब बाद में हम कहीं खो देते हैं, एंड दैट इज होप। वो हमारी जिंदगी का सबसे रॉ फेज होता है, जब हम ओवर कैलकुलेटिव नहीं होते कि इससे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, करियर बनेगा या नहीं, बस दिल में कुछ था और लिख दिया। एंड दैट्स व्हाई इन द म्यूजिक स्पेस एज वेल, अगर आप देखेंगे सम ऑफ द बिगेस्ट पॉप स्टार्स जो हमने देखे हैं इन द लास्ट 4-5 ईयर्स हैव बीन दीज यंग गन्स। बिली आइलिश द ग्लोबल आइकॉन का एग्जाम्पल ले लो, उनका गाना ओशन आइस तब फटा जब वो सिर्फ 18 साल की थी। हमारी अपनी जीनी जो देहरादून से है अब मुंबई में गाने बनाती है, उनके गाने लाइक सुकून, आशियाना, वो जनता के साथ कनेक्ट इसलिए ज्यादा करे बिकॉज उसकी राइटिंग बहुत ऑनेस्ट थी। तो ये ऑनेस्टी और ये रॉनेस कोई टेक्निक नहीं है या कोई हिम्मत नहीं है, या आई थिंक सोचने की हिम्मत है जो कहीं ना कहीं आई रियली फील वो उम्र अलाउ करती है। पर असली सवाल तो ये है कि जब हम कभी ये हिम्मत खो देते हैं तो क्या वो वापस मिल सकती है, क्या हम जीरो पे आके वापस शुरू कर सकते हैं। एक आर्टिस्ट है लखनऊ से जिनका एक गाना बहुत पॉपुलर हो रहा है, गाने का नाम है तारे, आर्टिस्ट का नाम है फरक, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट सॉन्ग्स जो जनता के दिल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें एक लाइन है जो आपको रोक देगी, वो कहता है, परिंदा पिंजरे में इतने दिन रहा कि अब आसमान से ही डर लगता है। देयर सो मच टू टॉक अबाउट दिस सॉन्ग बट आई विल लेट यू सिट विद इट। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। आर्टिस्ट का नाम है फरक, गाने का नाम है तारे। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10 एज आवर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। एंजॉय।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: Kaçta? Indie Top 10. Kanika Kasat. On Mirchi. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
7: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे. आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 7323578200. जय गुरुदेव.
8: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
9: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
10: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
9: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है.
9: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक.

न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: डैश किंग की आवाज में एक गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने हर्ष नुसी की आवाज में उन्हीं की लिरिक्स सुनी की कॉम्पोजिशन वाला गाना सुना, गाने का नाम साडी सुन ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। म्यूजिक आर्ट है, आर्ट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, एंड एक म्यूजिक का फॉर्म जो सबसे ट्रू है इन द वे इट एक्सप्रेसेस इज हिप हॉप। ये जॉनरा ना किसी स्टूडियो में पैदा नहीं हुआ था, ये वहां से आया है जहाँ लोगों को माइक नहीं दिया जाता था लेकिन दिल में कहानियां बहुत हैं। जहाँ तकलीफ कोई सुन नहीं रहा है तो एक्सप्रेशन म्यूजिक बन गया। हर कंट्री का, सिटी का, एरिया का रैप का फॉर्म अलग होता है, कॉज वहां से जुड़ी कहानियां अलग होती है। दिल्ली हिप हॉप अलग है, मुंबई हिप हॉप अलग है, केरला का हिप हॉप बहुत अलग है, पर व्हाट्स कॉमन अमंगस्ट ऑल दीज फॉर्म्स इज द रियलिटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ द आर्टिस्ट। पर कहीं ना कहीं इस पूरे मूवमेंट के पोस्टर बॉय रहे हैं डिवाइन, जिनका असली नाम विवियन फर्नांडिस है। बहुत सारे लोगों को लगता है दैट गली बॉय जो मूवी बनी थी वो उनकी लाइफ पे बेस्ड थी। दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। उन्होंने उस मूवी में कंसल्ट किया था, बहुत हेल्प करी थी, उनका म्यूजिक है बट वो उनके बारे में नहीं है। बट देयर आर सॉन्ग्स लाइक मेरी गली में जो पूरे देश ने पहली बार सुना ऑन अ बिगर लेवल, कॉज वो गली बॉय जैसी मूवी में आया। पर उसी साउंड ट्रैक में एक गाना था कॉल्ड आजादी। इस गाने के प्रोड्यूसर है डब शर्मा, जो चंडीगढ़ का एक लड़का है जिन्होंने अपने कमरे में बैठकर ये कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, किसी फिल्म के लिए नहीं, किसी ऑडियंस के लिए नहीं, बस अपने लिए। एंड द सॉन्ग समहाउ मेड इट टू अंकुर तिवारी, जो उस वक्त गली बॉय के म्यूजिक को सुपरवाइज कर रहे थे। एक मेल गया, एक मीटिंग हुई, एंड दैट सॉन्ग मेड इट टू द बिगेस्ट मूवी अबाउट एक्चुअल हिप हॉप। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज हैज कम आउट ऑफ द कल्चर। डब शर्मा डिवाइन का गाना, गाने का नाम है आजादी। हर बार सुन के गूज़बम्स आ जाते हैं। गाना इंडी टॉप 10 पर, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: एहसास क्यों?
1: क्या शो?
0: एक तरफा तराजू
1: क्या शो?
0: तेरी हंसी मेरे आंसू
1: क्या शो?
0: घुट घुट की क्यों सांस लूं
1: क्या शो?
0: उसे देगा क्या हिसाब
2: तेरा पिंजरा मजाल ने खाना परिंदे आने उड़ जाना तेरा पिंजरा तेरा मुक जाना सारा लाना बाना परिंदे आने उड़ जाना तेरा

0: ये गाना सुनने के बाद हाथ अपने आप सर पे चला जाता है. मैड रिस्पेक्ट टू डिवाइन फॉर दिस सॉन्ग, वन ऑफ द टॉप 5 सॉन्ग्स इन देसी हिप हॉप. एट आरजे करेगा ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड क्विकली इस इंडी पॉप क्विज का आंसर करो. डिवाइन एंड करण औजला ने एक कोलैब करके एक एल्बम रिलीज करी थी आज से 2 साल पहले. जल्दी बताओ उस एल्बम का नाम क्या है. काउंटडाउन का अगले वाला गाना अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 7 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
3: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
4: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
3: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
5: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
0: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन.
7: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
8: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
7: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
9: अब मिर्ची खा.
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां की आवाज में एक गाने का नाम है ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, इस हफ्ते भी दो पोजीशन ऊपर जम करके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। कुछ गाने इस हफ्ते हॉट होते हैं, अगले हफ्ते नहीं, बट कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं एक एड्रेस बन जाते हैं हमारे लिए, एड्रेस टू अ मेमोरी, अ ट्रिप टू नॉस्टैल्जिया। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना।
0: एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

गाने का नाम है मायरी, साल 2000, एल्बम फिर धूम पलाश था इनकी आवाज में। जरा याद कीजिए यार वो जमाना, कैसेट की रील पेंसिल से घुमाना, इंतजार करते रहना कि मेरे वाला गाना आएगा। आई रिमेम्बर आई वॉज ऑब्वियसली इन स्कूल जब मैंने गाना सुनना शुरू किया था, बहुत अच्छी धुन लगती थी। एंड दैट लाइन, दैट बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलके मायरी, शायद मैं इतनी छोटी थी दैट मैंने उसका मतलब ही नहीं समझा, एंड मैं बस बहुत इतराती थी ये गाना सुन के, सजती थी सवरती थी। एंड एज वी कीप ग्रोइंग अप वो गाने समझ में आने लगते हैं, उनके पीछे के मतलब बदलते जाते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे मायरी में वो अपनी माँ से ये कहानी बता रहे हैं ये भी नहीं समझ में आया था, लेकिन नाउ इट ऑल साउंड सो ब्यूटिफुल दैट वो जिस लड़की की तारीफें कर रहे हैं, जिस लड़की के बारे में बता रहे हैं, जिसकी याद उन्हें आ रही है, वो अपनी माँ को बता रहे हैं। पर यही तो बात है, गाना नहीं बदला यार, हम बदल गए। गाना 1998 में बना था, फ्रंट मैन पलाश सेन की आवाज, यूफोरिया द बैंड, जिसने आज भी ऑलमोस्ट आफ्टर 45 इयर्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कभी कोई फिल्म का गाना नहीं किया। द रियल ओजी पोस्टर बॉयज ऑफ पॉप म्यूजिक, अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, यूफोरिया द बैंड का गाना, गाने का नाम है मायरी, इज योर टिकट टू नॉस्टैल्जिया टुडे ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

आई स्वेयर गाने आर लाइक मेमोरीज जो हमें ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. आई वॉज टेकन बैक टू माई चाइल्ड हुड होम बाई लिसनिंग टू दिस सॉन्ग. पलाश सेन की आवाज में यूफोरिया द बैंड का गाना मायरी स्टिल हिट्स होम एग्जैक्टली हाउ इट यूज टू 10 years बैक और 20 years बैक. And that's why it's a classic. At RJ Kanega on Instagram par aao, koi bhi gana from the 90s, 2000s, jo aaj bhi aapko lagta hai, it hits home, buddy. Mujhse aage share karo. Main aur Ashka hai, my sound producer. Hum aapke recommendations ko bahut seriously lete hain. We might feature your song next week. Now back to the countdown. Agle wale gaane ki bari. Gaane ka naam hai Dealer. Diljit Dosanjh ki awaaz, unhi ki composition. 18 hafton se is countdown par barkarar. Dealer is playing right next for you on Gaana number 3. You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 3.

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Mirchi sun rahe hain aap, bandi ka naam hai RJ Kanika, show ka naam hai Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री थी, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक था. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं. इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक. लेकिन एक क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप. जसलीन रॉयल बादशाह का गाना इनाम वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. फिर एक नई नवेली एंट्री, ज़ारा खान स्केल्स का गाना मूव बॉडी ऑन गाना नंबर 9. संजू राठौड़ का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 8. हर्ष नुसी का साड़ी सुन पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके इस हफ्ते था ऑन गाना नंबर 7. ऐश किंग का किनिया सोनी गोइंग स्ट्रॉन्ग ऑन गाना नंबर 6. In all honesty, ये गाना इस countdown का मेरा फेवरेट गाना है. अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 5. आदित्य निखारी रैबिट और कुटले खा का ए अजनबी अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग ऑन गाना नंबर 4. दिलजीत दोसांझ का डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 3. The top 2 songs of the week, yet again, वही शफल हो रहा है ऊपर नीचे 17 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन, दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. एंड द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रॉर का गाना, मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा की आवाज में, मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा. पिछले हफ्ते नंबर 2 पर था, एक पोजीशन ऊपर जम करके इस हफ्ते शीशा इज ऑन गाना नंबर 1. ये दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 2.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स उनका प्यार उनका गुस्सा वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ
6: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ
7: ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ
8: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸ ਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਯੈਸ ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1 ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Chari on your Mirchi.
1: Purani Zamani ki one of the most beautiful and most talented actress Mumtaz. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और सुनिए एक पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में क्या शेयर किया था।
2: वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, दैट इज वन ऑफ द रीजन माय पेरेंट्स सेपरेटेड, बिकॉज व्हेन माय फादर केम फ्रॉम ईरान, माय मदर केम, माय मदर बिकेम ट्रू मॉडर्न एंड माय फादर वाज वेरी सिंपल पर्सन, ही हैड मनी, वो हिस्टोरिया होटल उनकी थी और ड्राई फ्रूट की बिजनेस थी उनकी। तो ही वॉज वेल ऑफ बट ही वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स, उनको नहीं पसंद था कि उनकी बीवी मॉडर्न हो। वो ना इत्तफाकी हो गई, दे वर नॉट गेटिंग ऑन एंड माई मदर वॉज एंजॉइंग टू ड्राइव कार एंड जीन्स पहनने लगे, वो तो गेट ऑन नहीं हुए। सो माई फादर सेड नो आई कांट टेक दिस, लेट्स हैव अ डिवोर्स। तो डिवोर्स में तो माई मदर सेड कि नहीं, मनी नहीं चाहिए, उसके अवज में मुझे मेरी बेटियां दे दी। तो वैसे भी मेरे फादर को लड़के चाहिए थे, वो समझते थे लड़के होंगे तो अच्छा है, लड़कियां शादी करके चली जाए, ऑर्थोडॉक्स। तो मेरी मम्मी ने कहा कि दो लड़कियां हैं, आप दूसरी शादी करेंगे तो शायद आपको लड़का हो जाएगा, तो लड़के मैं ले लेती हूँ। तो माय फादर सेड ओके। तो माय मदर ब्रॉट मी अप, माय ग्रैंडमदर ब्रॉट मी अप, माय आंट ब्रॉट मी अप।
1: और इसीलिए मुमताज शायद बन गई एकदम बेबाक और बिंदास। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
4: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
3: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
0: Purani jeans with Charu, only on

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Chari on your Mirchi.
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। फिरोज खान एंड मुमताज जी एक टाइम पे जब ये साथ में काम किया करते थे, इनके अफेयर के रूमर्स भी उड़ा करते थे। इस बारे में सुनिए एक रीसेंट पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था।
2: देखिए, फिरोज खान को तो पूरी दुनिया की औरतें प्यार करती थी, बट वी वर अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड। मैं तो उनको JBH वाडिया के जमाने से जानती हूँ, जब उनके खुद की एक इंग्लैंडियन गर्लफ्रेंड थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। और फिरोज खान और शमी कपूर के अलावा मुझे आज तक फिल्म लाइन में कोई खूबसूरत हीरो लगा नहीं। इवन टुडे आई थिंक ये दो ही पर्सनालिटी थी जो बहुत हैंडसम थी हमारी फिल्म लाइन। काफी लोग थे जो बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन एक फिजिकल अट्रैक्शन जो होती है ना, मुझे इन दोनों से लगती थी व्हेन आई वाज वर्किंग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आदमी आपको अट्रैक्टिव लगे उसके साथ अफेयर हो। मेरा फिरोज के साथ अफेयर कभी भी नहीं था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट आई वाज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ हिम एंड आई वाज फिजिकली अट्रैक्टेड टू हिम। अफेयर वफेयर कुछ नहीं हुआ मेरा उनके साथ।
1: चलो, क्लैरिटी मिल गई, अच्छी बात है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जींस मुमताज स्पेशल विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: लोग ऐसा कहते थे कि राजेश खन्ना मुमताज जी के बीच में भी रिलेशनशिप था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये कैसा रिलेशनशिप था, सुनिए पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था।
2: लोगों का क्या है, मैं आपसे एक बात बताऊं, जो भी हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री होती है ना, जब वो 8-10 फिल्में एक साथ करते हैं, सो दे नो ईच अदर सो वेल, दे बिकम ऑटोमेटिकली वेरी क्लोज, वो एक शाइनेस निकल जाती है, देखने से ऐसा महसूस होता है कि इनका कुछ चक्कर है, तो वो इंसान क्लोज हो जाता है, वो केमिस्ट्री जो हो जाती है, जिसकी वजह से जब एक दूसरे से बात करते हैं, हाथ गले में डालते हैं, कमर में डालते हैं, जैसे धक्का मारना हो, तो वो डरते नहीं है एक दूसरे से, नो फॉर्मेलिटीज, सो दे बिकम लाइक अ फ्रेंड। तो वो था मेरा पार्टनर के साथ, मैंने कितनी 10-15 पिक्चर लिखी और एक भी फ्लॉप नहीं हुई, हमारे सितारे मिलते होंगे साथ, अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं है, अफेयर नहीं था मेरा। एंड वी वर नेबर्स, मेरा घर और उनका घर आजू बाजू में ही था, और अंजू तो पहले से उनके साथ थी। नो ही वॉज नेवर इन लव विद मी, ही वॉज विद अंजू व्हेन आई वाज वर्किंग विद।
1: सही बात है भाई, केमिस्ट्री सिर्फ रिलेशनशिप से थोड़ी ना होती है, अच्छी गहरी सच्ची दोस्ती से भी तो होती है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you kyunki is film mein kahi chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahi bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kahi aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेक बैटनो, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Pyari brides, kya dhoond rahi ho apna dream wedding lehenga? To aa jaiye Miss India Bridal Store.
7: Miss India laaye hai latest bridal lehengas, exclusive reception aur party wear dresses and grooms ki sherwanis.
6: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Islip.
8: Tera kya hoga, Kalia?
9: Sardar. मैंने आपका नमक खाया सरदार
8: अब मिर्ची खा
10: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Charu. Only on Mirchi.
1: क्या ये बात सच है?
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये बात कि शशि कपूर साहब ने एक बार मुमताज जी के साथ काम करने से मना कर दिया था, सुनिए एक पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था।
3: यस, सच्चा झूठा में everybody refused with me. Dara Singh ki heroine thi, ab to mujhe nahi kaam karna. That time he took 2 lakhs to give him for signing amount. His Shashi ji said no, change Mumtaz. He said sorry. He walked out. Why only Shashi Kapoor bichara? Whole industry refused.
2: To kya ye actors jinhone Mumtaz ji ke sath kaam karne se mana kiya, inhone kabhi aake unko aisa bola ki sorry ya us time aisa ho gaya tha?
3: Nahi, ego hota na, mard logon ka ego bahut hota na. They are never wrong. They are always right. And that doesn't really matter. As far as they worked with me, मैं उनकी शुक्र गुजार हूँ। उन्होंने काम तो किया। अब वो खोदते बैठो तो सुरंग का एंड ही नहीं होता, चलता है। Goes on and on in life.
2: क्या बात है? इस बात से तो यही समझ में आता है कि सोच भी बड़ी रखनी चाहिए और दिल भी बड़ा रखना चाहिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स

0: पुरानी जींस मुमताज स्पेशल विद चारू और यह मिर्ची।
1: लेट 60s की वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट लव स्टोरीज शम्मी कपूर जी एंड मुमताज जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और सुनिए एक पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था कि कब उन्होंने शम्मी कपूर जी को पहली बार देखा था।
2: जब मैं दिल देखी देखो की शूटिंग पे गई थी मेरी बहन के साथ शूटिंग देखने के लिए, जब मैं 10 स्कूल से छुट्टी 10 11 की होंगी, मेरी बहन खुद 13 14 की थी, बहुत छोटी थी, तो मैं जाके जब सेट पर बैठी तो मैंने उनका गाना चल रहा था तो मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छे लगे शम्मी जी। तो मैंने कहा मलका मेरे को इससे शादी करना है। तो मेरी बहन बोली पागल, उसकी शादी हो चुकी है, उनकी वाइफ का नाम है गीता बाली। बोली हो गई शादी? बोले हाँ हो गई, मगर मुझे इसी टाइप के आदमी से शादी करना है। बोले ठीक है इंशाल्लाह, अगर तेरे नसीब में होगा हो जाएगा। तो मैं 10 साल की उम्र से उनको पसंद की थी, ऐसा नहीं कि अभी की थी।
1: ये कहानी आगे कैसे बढ़ी, क्या हुआ, सुनते हैं थोड़ी देर के बाद। राइट हियर पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
3: यूं ही तुम मुझसे बात

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सिर्फ हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहने के काम मत चलाओ। गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन। ज्योत्सना एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टीवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड प्रेजेंट दोस्ती स्पेशल जैमिंग।

0: Night 1.0. Live band and Bollywood singers, shairi or non-stop open dance floor.
1: And the best part, sirf $65 mein 3-course dinner aur dher sari masti. Friday, August 7th, 7 PM at Royal Albert's Palace, New Jersey. Tickets available on sulekha.com or call 732-997-2409.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
0: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
1: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
0: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
4: अब मिर्ची खा.
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
7: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: पुरानी जींस मुमताज स्पेशल विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: मुमताज जी ने शम्मी कपूर जी को पहली बार दिल देके देखो फिल्म के सेट्स पर देखा था और पहली नजर में प्यार हो गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन तब सिर्फ मुमताज को हुआ था, वो भी बचपन वाला प्यार, क्योंकि तब वो सिर्फ शायद 11 साल की थी और उस फिल्म के सेट्स पर आई थी क्योंकि मुमताज जी की जो बहन थी वो भी उस फिल्म में एक रोल कर रही थी। इसके 10 साल बाद मुमताज जी को मौका मिला शम्मी जी के साथ ब्रह्मचारी फिल्म में काम करने का। सुनिए एक पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था।
2: जब मैं बड़ी हुई फिर मुझे ये पिक्चर मिली, उस वक्त गीता जी गुजर गए थे, गीता बाली जी गुजर गए, तो he liked me, I liked him. We were there with each other for 2-3 years, I would say at least 3 years. 3 साल के बाद उन्होंने मुझे कहा कि I love you and I want to marry you. तो मैंने कहा okay, I'm ready to marry you. Then उन्होंने कहा कि काम तुम नहीं कर सकती, और मैं इतनी ambitious थी, और वो शमी जी 17 साल कुछ बड़े थे मुझसे, और मेरी मम्मी बोलती थी बहुत बड़ी एज है और बहुत लड़कियां इधर उधर पीछे हैं, तुझे खुश नहीं रखेंगे वो। तो मैं शमी जी को बोलती थी लीव हर, आई एम गोइंग टू मैरी यू, मगर काम करूंगी। तो शमी जी ने बोला काम नहीं कर सकती, बोले हमारे कपूर फैमिली के अंदर बहू नहीं करती है फिल्मों में, और उस जमाने में नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा यू कांट, तो मैंने कहा देन शमी जी ओन वर्क, बिकॉज आई लव माई जॉब, आई लव माई वर्क एंड आई वॉन्ट टू बी समथिंग इन माई लाइफ।
1: वेल, फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरीज में से एक है मुमताज जी और शमी जी की लव स्टोरी, और मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स में से एक है इन दोनों पे पिक्चराइज्ड ये गाना पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
8: It's 2:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
0: Purani jeans. With Charu. Only on

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Charu only on Mirchi.
1: मुमताज जी और शम्मी कपूर जी कुछ 3 साल तक एक रिलेशनशिप में थे। उसके बाद शम्मी जी ने मुमताज जी को प्रपोज भी किया, मुमताज जी ने हाँ भी की, लेकिन जब ये कंडीशन आई कपूर खानदान की तरफ से कि शादी के बाद वो काम नहीं कर सकती, तब मुमताज जी ने मना कर दिया, क्योंकि तब उनके करियर की शुरुआत ही हुई थी और वो काफी कुछ अचीव करना चाहती थी। लेकिन जो भी वजह रही हो, रिश्ता टूटता है तो दिल भी टूटता है। एक पॉडकास्ट में सुनिए उस टाइम के बारे में उन्होंने क्या शेयर किया था कि किसने उनको संभाला, हिम्मत दी।
2: माय मदर डाइड वेरी यंग व्हेन आई वाज डूइंग शांतारामस पिक्चर, शी डाइड देन डिलीवरिंग माय वन ऑफ माय ब्रदर। आई वाज ब्रॉट अप बाय माय आंट, माय रियल मदर वाज माय आंट। तो आंटी मुझे बहुत प्यार करते थे, माँ से ज्यादा प्यार करते थे, और वो हमेशा मुझे देखते ही बोलते थे, क्या हुआ, तो खुश है ना? मैं यहाँ ना खुश हूँ, तू लग रही नहीं है। एंड मेरी सिस्टर थी, मेरी बहन वॉज ऑलवेज लाइक अ रॉक, माई आंट वॉज लाइक अ रॉक। एंड देन आई हैड नो टाइम टू थिंक अबाउट वन थिंग, आई वॉज सो बिजी। 7 to 2, 2 to 10, 7 to 2, 2 to 10, till I got married. तो बैठ के किसे गाने याद करूं, डायलॉग याद करूं कि क्या अभी क्या करूं? So I was okay. कितना भी इंसान प्यार करे, वो जख्म भर तो जाते ही है ना।
1: वो एक शेर था कि वक्त हर जख्म को भर देता है, कुछ भी कीजिए, याद रह जाती है हल्की सी चुभन की हद तक। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Rani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच-सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है?
2: है।
1: गर्मियों की निहार है?
2: हाँ है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: प्यार है,
1: तुम
2: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है।
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
11: Pirani Jeans with Charu only.

0: पुरानी जींस मुमताज स्पेशल विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: मुमताज जी ने अपने करियर में दो बहुत बड़ी फिल्में रिजेक्ट की थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक रिजेक्ट की थी पैसे की वजह से और दूसरी रिजेक्ट की थी प्यार की वजह से, एक्चुअली जो प्यार पूरा ना हो पाया उसकी वजह से। ये फिल्में थी सीता और गीता और अंदाज। सुनिए एक पॉडकास्ट में उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था।
2: देखिए, अभी 6.5 लाख में लेती थी उस जमाने में, अब 2 लाख में मैं कैसे करूँ। रमेश जी ने मुझे बोला 2 लाख, 1 लाख गीता का, 1 लाख सीता का। तो मैंने कहा नहीं, आई डोंट थिंक आई विल वर्क इन 2 लाख। गीता और सीता तो मैंने प्राइस के लिए रिफ्यूज की थी, और वो दूसरी पिक्चर जिसमें हेमा जी थी, वो गाना है ना दिल जिसे दो, अंदाज, बिकॉज शमी कपूर वाज द हीरो। तो दैट इज द रीजन आई डिडंट वर्क, अदरवाइज इट वाज ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, वेरी वेल रिटन, बट दैट इज द ओनली रीजन, देयर वाज नो अदर रीजन। मुझे ये दो पिक्चर के बाद में लोगों को पता चल गया फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि मुमताज और शमी जी, मैं शमी जी तो बेचारे कभी मना नहीं किए, जो क्यों बोलो, मुमताज शमी जी के साथ काम नहीं करती, इसलिए मुझे ऑफर आए ही नहीं।
1: वेल, इन केस यू डोंट नो, तो मुमताज जी और शमी जी 3 साल तक एक रिलेशनशिप में थे। शमी जी ने शादी के लिए प्रपोज भी किया, लेकिन उनकी एक कंडीशन थी कि शादी के बाद वो काम नहीं कर सकती। ये शर्त मुमताज जी को मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने मना कर दिया, और इसीलिए उनका रिलेशनशिप थोड़ा सा बिटर नोट पे एंड हुआ था। खैर, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जींस मुमताज स्पेशल विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: बोल्ड बेबाक बिंदास मुमताज जी, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। मुमताज जी पुराने जमाने की वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस थीं जिन्होंने बिकिनी पहनने की बोल्डनेस दिखाई थी फिरोज खान की फिल्म अपराध में। पर क्या उसके बाद बाकी के और फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर्स ने उनको ऐसे इंसिस्ट नहीं किया कि उनकी फिल्म में भी वो बिकिनी पहने? सुनिए एक पॉडकास्ट में इसके बारे में उन्होंने क्या शेयर किया था।
2: मुझे वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई क्योंकि दैट टाइम आई वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्ट्रेस, सो आई कुड अफोर्ड टू से नो, मुझे नहीं पहनना। और मैंने फिरोज को प्रॉमिस भी किया था कि फिरोज मैं ये आपके लिए कर रही हूँ, उसके बाद मैं कल बिकिनी नहीं पहनूंगी। फिरोज खान वाज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, व्हाट अ लेंस की आईज थी वो इंसान की। उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुझे पेश करूंगा, अगर तुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं काट दूंगा। मैंने बोला प्रॉमिस, ही सेड प्रॉमिस। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था अपने फिगर में बिकॉज आई ऑलवेज हैड अ हैवी ईरानियन थाइज, सो आई हैड कॉम्प्लेक्स कि मैं मोटी लगूंगी बिकिनी में। तो उन्होंने मुझे रैशेज दिखाया, मैंने बोला नहीं फिरोज, आई एम हैप्पी, यू कैन कीप इट। तो दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट, आई नेवर वोर बिकिनी। आए थे प्रोड्यूसर, आई सेड नो।
1: भाई बिकिनी पहनकर उस टाइम पे मुमताज जी ने शायद एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया हो, लेकिन सच ये है कि ट्रेडिशनल कपड़ों में, साड़ी में भी वो उतनी हॉट, एक्चुअली उससे ज्यादा हॉट और ब्यूटीफुल लगती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
9: Listener mein, back to back gana sunega.
10: Back to back gana sunega.
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
11: Purani Jeans. With Charu. Only on

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कारोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेह पूर्ण आमंत्रण. शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ. शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 7323578200. जय गुरुदेव.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
4: अब मिर्ची खा.
6: Radio Mirchi, it's hot.

0: पुरानी जींस मुमताज स्पेशल विद चारू ऑन योर मिर्ची।
1: आजकल तो जब फिल्मों की शूटिंग होती है तो स्टार्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनके मेकअप मैन, उनके हेयर ड्रेसर, उनके पर्सनल ट्रेनर सब उनके साथ रहता है। वैनिटी वैन में अच्छा खासा घर बसा हुआ होता है। लेकिन एक पॉडकास्ट में सुनिए मुमताज जी ने क्या शेयर किया था कि पहले के टाइम में जब ये फैसिलिटीज नहीं होती थी तब इंडोर और खास करके आउटडोर शूटिंग वगैरह में कैसे सब मैनेज होता था।
2: वैनिटीज नहीं थी लेकिन हमारा मेकअप मेरा परमानेंट था, हेयर ड्रेसर मेरी परमानेंट थी, गाड़ी मेरे पास अल्लाह के फजल से थी। दे यूज्ड टू कम इन द मॉर्निंग, दे मेक मी रेडी इन माय बंगलो एंड आई यूज्ड टू गो फॉर शूटिंग। हाँ, इतनी कंफर्ट नहीं थी। अगर आपको बाथरूम जाना हो जंगल में तो लड़कियों को ले जाना पड़ता है कि पर्दा करो तो मैं जाऊँ। कैसे जाएंगे, जय शिव शंकर का देखिए ना, कहाँ जाऊँ मैं बाथरूम। बट देन आई टोल्ड माय ड्राइवर यू कम एंड देन माय हेयर ड्रेसर केम एंड वन ग्रुप डांसर। साड़ी लेके जाके दूर जाओ जाके फिर एक वो पकड़ रहे एक वो पकड़ रहे among the girls, so all the three girls I used to do pipi, then I used to say you want to go, like, yes you want to go, फिर बाद में कौन उतना चल के आएगा। ऐसा हमारा हाल था। अभी तो लोग बहुत comfortable है, very lucky I would say to have vanity। हमारे यहाँ तो गर्मी में मरो, air condition कहाँ से मिलेगा तुमको outdoor में।
1: सही बात है। इसी बात पे जय जय शिव शंकर गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: सारे गामा वन टू थ्री फोर
1: सारे गामा मा सारे गा का सारे मा मंगा रेसा सारे गामा मा सारे गा का सारे मा मंगा रेसा मंगा रेसा मंगा रेसा मंगा रेसा मंगा रेसा मंगा रेसा मंगा रेसा मंगा रेसा
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
7: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
8: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
7: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स लेडीज फर्स्ट चॉइस।
9: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
10: Tera kya hoga Kalia?
11: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
10: Ab mirchi kha.
12: Radio Mirchi. It's hot.
13: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

दोस्तों, फ्राइडे की ना एक अलग ही साइकोलॉजी होती है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, फ्राइडे आ चुका है। वैसे तो यार, ये पूरा हफ्ता ना मंडे से लेकर थर्सडे तक बिल्कुल डिसिप्लिन मोड में निकल जाता है। अलार्म्स हो, मीटिंग्स हो, डेडलाइंस हो, ईमेल्स हो, और फिर फ्राइडे शाम आती है जैसे ना किसी ने ब्रेन को ऑफिशियली परमिशन दे दी हो कि बस अब रिलैक्स हो जाओ। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फ्राइडे का एक्साइटमेंट सिर्फ वीकेंड की वजह से नहीं होती, बल्कि उस फीलिंग की वजह से होती है कि यार अब ना कंट्रोल थोड़ा वापस हमारे पास आ चुका है। क्योंकि ड्राइव थोड़ी लाइटर लगने लगती है, म्यूजिक थोड़ा लाउडर लगने लगता है, और प्लान्स चाहे सिंपली क्यों ना हो, फिर चाहे चाय पीने का प्लान हो या बस घर पे चिल करने का हो, बस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लगता है। तो यस, फ्राइडे की शाम एक रिमाइंडर होती है कि लाइफ ना सिर्फ रूटीन नहीं, ब्रेक्स भी है। तो चलिए इसी ब्रेक के साथ आपके लिए ये अगला गाना आपके फ्राइडे की शाम को धमाकेदार बनाने के लिए। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Cabana. Murga, murga. La virba, la murga.
0: Mirchi, murga.
2: हेलो विनीत जी।
3: हाँ जी
2: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
3: हाँ मैं तो चल रही है।
2: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
3: 7:30 बजे तक।
2: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
3: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
2: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
3: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
2: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
3: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
2: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
3: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
2: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
3: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
2: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएगा।
3: हेलो हेलो,
2: आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएगा।
3: हेलो हेलो

0: बुरा मनमानी है काम की।
1: अच्छा भैया आप मेरे यहाँ जाने वाले थे या बजाने वाले थे? कुकुडुकू
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट पटाक।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
7: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ थाउजेंड ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज। The king of mortgage industry.
9: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
10: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

दोस्तों, हम सब ना अपनी कार में दो अलग पर्सनालिटीज लेके चलते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो हम बिल्कुल डिसेंट से सीधे साधे इंसान होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा फेवरेट बॉलीवुड गाना बजता है, स्टेयरिंग व्हील माइक बन जाता है, विंडशील्ड ऑडियंस और पूरी कार एक पर्सनल कॉन्सर्ट स्टेज। यार, किसी को लिरिक्स परफेक्ट आते हो या नहीं आते हो, कोई सिर्फ लाला ला पे काम चला लेता है, और कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस तो इतना सॉलिड होता है कि एकदम कॉन्फिडेंस से गलत गाना देते हैं कि ओरिजिनल सिंगर भी सोचने लगता है कि भाई क्या गा रहे हो। तो चलिए आज एक काम करते हैं, जो अगला गाना है जो मैं बजाने वाली हूं आपके लिए, उसे सिर्फ सुनना मत, जहां भी हो, कार में, किचन में, ऑफिस से घर जाते हुए, चैलेंज ये है कि उसके साथ आपको जोर से ये गाना गाना है। क्योंकि बॉलीवुड के गाने सिर्फ सुनने के लिए थोड़ी ना बने यार, वो तो साथ गाने के लिए भी बने हैं, अपना भी तो टच होना चाहिए। और हाँ, बाद में डीएम करके जरूर बताना कि आज के गाने में लिरिक्स याद भी थे या फुल कॉन्फिडेंस पे गलत गा रहे थे। टेल मी ऑन इंस्टेट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR। तो चलिए फ्राइडे कार म्यूजिक शुरू करते हैं, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
8: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
9: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
8: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, इज़िलिन।
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: starts 4:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पहली बार सुनते ही मूड हल्का कर देते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और ऐसा ही फील आ रहा है एक नए गाने से, मस्करा फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा। बस इसका म्यूजिक दिया है एआर रहमान ने, लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने और गाने को आवाज दी है वेदांग रैना और निलंजना घोष ने। ऑनेस्टली इस गाने में ना कोई हैवी हार्ट ब्रेक ना कोई इंटेंस ड्रामा है, इसका चार्म ही उसकी प्लेफुलनेस है, थोड़ी सी शरारत, थोड़ा फ्लर्टिंग वाला कॉन्फिडेंस और वो फीलिंग जब किसी की एक स्माइल ना पूरे दिन को अमेजिंग बना देती है। और जी हाँ, मस्करा टाइटल भी बिल्कुल परफेक्ट लगता है क्योंकि यार गाना सुनते वक्त लगता है कि जैसे कि किसी की आंखों की तारीफ हो रही हो, लेकिन वो कॉलेज वाली टीजिंग, वो नज़रों वाली कॉन्वर्जेशन और वो एक्साइटमेंट जब किसी को देखते ही ना मूड ऑटोमेटिकली बन जाए, ना कि कोई पोएटिक हैवी लाइन से। ये जो म्यूजिक है वो रहमान सर का है, लेकिन वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भी हम रहमान सर के बारे में बात करते हैं तो अक्सर ग्रैंड मेलोडीज या सोलफुल ट्रैक्स याद आते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने गाने को बहुत ही लाइट और ब्रीजी रखा है। इरशाद कामिल के लिरिक्स और भी ज़्यादा मस्ती और प्यारा बना देते हैं इस गाने को। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि गाना खुद को बहुत सीरियसली लेता ही नहीं है। तो आजकल के इतने सारे रोमांटिक्स ट्रैक है जो यार इमोशंस में बिल्कुल डुबा देते हैं, लेकिन मस्करा में एक अलग ही फ्रेशनेस है। ऐसा गाना जो ड्राइव पर भी चले, फ्रेंड्स के साथ भी चले और रैंडम स्माइल भी दे जाए। तो ऑनेस्टली दोस्तों, कभी कभी ना प्लेलिस्ट को भी ऐसे गाने की जरूरत होती है जो दिल को हैवी नहीं, हैप्पी कर दे। तो आज आपके लिए ये गाना बजाते हैं, लेकिन आप भी मुझे बताइए विच इज दैट सॉन्ग जिसको सुनते ही आपका मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI और बजाते हैं वो गाने यहाँ पर। फिलहाल आपके लिए मस्करा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake please थिएटर में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. And for God's sake किसी से भी स्टोरी मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है, यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है, ओके आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा, तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
8: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islin.
10: दिस गोल्डन आवर इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क. सुनहरी होगी ड्राइव जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब.
11: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
12: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

फ्रॉम मीठी सी मिस टू ब्लॉक बस्टर ब्लिस। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और क्या आपको वो लड़की याद है जो फुगली में थी? शायद नहीं, लेकिन प्रीति तो सबको याद होगी। हाँ हाँ, कबीर सिंह वाली प्रीति। जी हाँ, आज बात हो रही है कियारा अडवाणी की, क्योंकि आज है जुलाई 31st, यानी कियारा अडवाणी का जन्मदिन। और वैसे तो उनका नाम आलिया अडवाणी है, लेकिन सलमान खान ने एक टाइम पे कहा था कि यार नाम तो बदल दो, इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक आलिया है। तो बस आलिया अडवाणी बन गई कियारा अडवाणी। और उन्होंने तो 2014 में फुगली से डेब्यू किया था, लेकिन पहली बार स्पॉटलाइट में 2016 में आई थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में एज साक्षी धोनी। तो फिर उसके बाद बहुत ही ज्यादा बूम मिला था उनको लव स्टोरीज में, जो कि नेटफ्लिक्स पे आई थी द ओरिजिनल लव स्टोरीज। और तब सबने कहा था कि हाय कौन है ये। और फिर कबीर सिंह तो सब जानते ही हैं। उसके बाद गुड न्यूज, शेरशाह, जुग जुग जियो, सत्य प्रेम की कथा, हिट्स के फायर क्रैकर्स कियारा अडवाणी छोड़ती ही गई। और वैसे तो यार एक टाइम पे उन्हें टीचर बनना था, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार बॉलीवुड में ज्यादा मजा आ रहा है। तो चलिए करते हैं आज बॉलीवुड की इस टैलेंटेड एक्ट्रेस को विश विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट फेवरेट कियारा अडवाणी सॉन्ग ऑफ योर्स। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए कियारा अडवाणी का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La vieja la burka.
1: Milchi, burka. हेलो हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी
1: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
1: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: नींद में है क्या
1: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
1: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
2: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
2: हेलो
1: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पर परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
1: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा अभी
1: आप देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गया मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
2: चप्पल पता
1: नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
2: आराम कर दिया तुम
1: जीना बता रहा हूँ यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
2: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
1: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
7: प्यारी ब्राइड क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
10: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती प्यार से कूटती मुस्कुराकर पीसती अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी दीप खाओ तो जानो
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए AIIMS Education हमेशा आपके साथ है.
14: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding,
15: EKG and phlebotomy,
14: medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
13: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
16: Tera kya hoga, Kalia?
17: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
16: Ab, mirchi kha.
18: Radio Mirchi, it's hot.

0: दोस्तों कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे लिए कोई अबाव एंड बियॉन्ड जाए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए कि हम जिम ज्वाइन करें तो यार ट्रेनर सिर्फ एक्सरसाइज ही ना बताए बल्कि पोस्चर भी करेक्ट करे, प्रोग्रेस भी चेक करे और इंजरी होने से पहले ही रोक ले। यार कितना अच्छा लगेगा कि ऐसे अबाव एंड बियॉन्ड सभी अपने काम में जाए, क्योंकि यार बड़े बड़े डिसीजन जैसे कि होम बाइंग भी एक ऐसी ही चीज होती है जहां सिर्फ लोन अप्रूवल नहीं होता, राइट गाइडेंस, राइट प्लानिंग और वो एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होता है जो हमें लॉन्ग टर्म में एक सही डिसीजन लेने में मदद करें। और इसी एक्स्ट्रा माइल के बारे में आज बात करने वाले हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: शुक्र करो, शुक्रवार है भाई और बहनों। मैं हूं आपका दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। वेदर बैक इन द 90s एंड नो रेन, एंड टुडे द यूएस मार्केट्स आर अप एंड विद दैट द मॉर्गेज रेट्स आर आल्सो अप। लायन मॉर्गेज विद एन एक्सपीरियंस्ड स्टाफ offering expertise in every area of mortgage lending, from purchase to refinance. We have access to a full range of mortgage source, but we are more important, we provide the kind of advice that will put your mind at ease, because all our experts are dedicated to finding the right loan with the best rates, terms and costs to meet your unique needs. But that's just the beginning of our service. Throughout the lending process, we provide our regular loan updates and program reports, so you always know the status of your loan. So call us today at 732-339-3155, Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.5%. 20-year fixed mortgage rate, 6.375%. 15-year fixed mortgage rate, 5.875%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com, and it is lionmtg.com. Remember, listeners, refinances are still active and well. At the same time, home values are holding strong, creating incredible opportunities to cash out on or consolidate your debt by paying off high interest rate credit cards, debt, student loans, or any private loans. And remember, refinance option, you can get it free refinance or zero closing cost refinance option. So for all your mortgage needs, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye. Look at

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
6: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
9: Tera kya hoga, Kalia?
10: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
9: Ab mirchi kha.
11: Radio Mirchi, it's hot.
12: It's 5:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
13: Sham Shandar. Let's do Nautanki. Have a funky time.
14: कुछ फिल्मों का नाम सुनते ही उनकी कहानी नहीं उनके एहसास याद आ जाते हैं. शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज एक ऐसी मूवी की बात हो रही है, आवारापन. बॉलीवुड के उन फिल्म्स में से है जिसे वक्त के साथ लोगों ने और ज़्यादा प्यार दिया. डार्क इमोशन, सोलफुल म्यूजिक और वो इमरान हाशमी का एरा यार, जब हर फिल्म के गाने ना सीधा प्लेलिस्ट में परमानेंट जगह बना लेते थे. क्योंकि वो गाने सिर्फ हिट्स नहीं होते थे, वो लेट नाइट ड्राइव्स, हेडफोन्स और अपनी ही दुनिया का एक साउंडट्रैक बन जाते थे. और अब जब अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये आवारापन सुनाई देता है ना, तो लगता है कि जैसे एक नई आवाज़ उन कहानियों को फिर से महसूस करने का मौका दे रही हो. क्योंकि कुछ मेलेडीज़ की खूबसूरती ही यही होती है कि जनरेशन्स बदल जाती है लेकिन इमोशंस वही रहती है. वैसे आप भी बताइए दोस्तों कि अगर मैं आवारापन बोलूं तो सबसे पहले आपको उस फिल्म का कौन सा गाना या मोमेंट याद आता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI. और चलिए, एक ऐसी आवाज जो पुरानी यादों को नए अंदाज में छू जाती है, अरिजीत सिंह की आवाज में सुनते हैं ये आवारापन राइट हियर ऑन मिर्ची. इट्स हॉट
15: मिर्ची, फ्रेश माल.
16: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और बातें हो रही है माइलस्टोन एल्बम दिल चाहता है के बारे में, जो रिलीज हुई थी 2001 में और जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री का साउंडस्केप ही चेंज कर दिया। डायरेक्टेड बाय शंकर एहसान लॉय, जिन्होंने यार अनकन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे, डिड गेरो डू आयरिश इन्फ्लुएंसेस के साथ में इस ट्रायो का यूथफुल लिरिक्स ने इस एल्बम को सुपर डुपर हिट बना दिया था। और इतना ही नहीं, बीबीसी एशिया के टॉप 40 में इंक्लूड किया था एज अ ट्रेंड सेटर एल्बम। और मुझे तो लगता है कि अगर कंटेम्प्रेरी वाइब आज भी चाहिए ना, तो ये एल्बम कटिंग एज था, विच वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। 2001 में आया था, लेकिन 2025 में भी आज भी इसके गानों पर ट्यून इन कर सकते हो। तो आप भी मुझे बताइए, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिल चाहता है एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और कहीं ना जाइए, क्योंकि इस एल्बम के गानों के बारे में बहुत ही खास बातें करने वाले हम आज राइट हियर ऑन द शो। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और चलिए ले चलते हैं आपको 2001 में जब दिल चाहता है रिलीज हुई थी। और यार वो सिर्फ फरहान अख्तर की डायरेक्टोरियल डेब्यू ही नहीं थी, लेकिन एक ऐसा एल्बम बन गया था, एक ऐसा साउंड ट्रैक बन गया था जो टाइमलेस था। और शंकर एहसान लॉय का ये जो साउंड ट्रैक था उसने धमाका किया था, स्पेसिफिकली विद द टाइटल ट्रैक दिल चाहता है। क्योंकि यार दिल चाहता है सुनते ही ना दिमाग में गोवा के क्लिफ्स, रोड ट्रिप्स और केयर फ्री दोस्ती ना फ्लैश हो जाती है। और ये सॉन्ग वैसे तो सिडनी के बूंदी बीच और चपोरा फैट गोवा, इन दोनों लोकेशंस पे शूट हुआ था, लेकिन ये इकलौता गाना ऐसा है जिसके वजह से गोवा टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हुआ था। क्योंकि इतने सारे दोस्तों ने प्लान कर लिए थे कि यार चलो गोवा चलते हैं। हाँ, कुछ प्लान सक्सेस हुए थे, कुछ प्लान फेल हुए थे, लेकिन प्लान तो सबने बनाए थे। तो जी हाँ, ये सिर्फ एक गाना नहीं, लाइफ का मिशन स्टेटमेंट बन चुका था, लिव फ्री लव रियल एंड लव लाउडर। तो चलिए आपके लिए प्ले करते हैं दिल चाहता है, लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट वन फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम ऑफ योर्स। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए गोवा की यादें ताजा करते हैं विद दिस दिल चाहता है, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: ¡Cabana!
0: ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
1: ¡Mirchi, murga!
2: ¿Aló?
3: ¡Hi! ¡Yo! से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि

0: महीने से, तो दबाइए 3,07,739। हाय, ये
1: Hello?
0: फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए, तो दबाइए 4198393।
2: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार, अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं कभी वो दबा रहे हैं, आप थके नहीं है? आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका
1: वही मैं सुन रहा था, मतलब लगा।
0: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाएं 5,07,339। हो गया
1: जी।
0: कुकड़ों को
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटा।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
7: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
8: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
12: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Conditions apply.
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
17: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और ऐसे कैसे हो सकता है कि वीकेंड का प्लान बने, स्क्रीन टाइम का प्लान बने, और वो भी बिना स्नैक के? नो नो नो नो। और इसीलिए दीप चिप्स लाए हैं आपका मूड सेट करने के लिए, अलग अलग फ्लेवर्स के, अलग अलग टाइप के चिप्स, चाहे फिर वो ब्लैक पेपर वाला थोड़ा बोल्ड, रेड चिली वाला थोड़ा फिल्मी, या नेचुरल एकदम सीधा साधा क्रंच। तो यार, एक बोरिंग से स्क्रीन टाइम को बनाओ फुल ऑन धमाकेदार। लाइट्स ऑफ, नेटफ्लिक्स ऑन, और दीप चिप्स का पैकेट क्रंच, ये सिर्फ स्नैक नहीं है, ये यार वीकेंड वाइब्स का रिमोट कंट्रोल है। तो अगर आपने ट्राई किया तो बताना कैसा लगा, और नहीं किया है तो आज ही ट्राई करना दीप चिप्स फ्लेवर का एटीट्यूड, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
6: Happy Friendship Day कहके काम मत चलाओ। Get ready for the ultimate Friendship Day celebration. Jyot Sinha and Tarun Sharma of Cultivate Talents Unlimited present Dosti Special Jamming Night 1.0. Live band and Bollywood singers, shayari or non-stop open dance floor.
7: And the best part, sirf $65 mein 3-course dinner aur dher sari masti. Friday, August 7th, 7 PM at Royal Albert's Palace, New Jersey. Tickets available on sulekha.com or call 732-997-2409.
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzilin, New Jersey. Conditions apply.
10: Listener MA, back to back gana sunega.
11: Back to back gana sunega.
10: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot

0: at 6:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और कोई भी कुछ भी कह ले, अगर कोई भी ऑफिस पार्टी हो और डीजे ने अगर कोई कहे नहीं बजाया तो इज दैट पार्टी इवन अ पार्टी? जी हाँ, कोई कहे कहता रहे फ्रॉम दिल चाहता है आज का बस टॉपिक और आज का बस सॉन्ग, क्योंकि दिल चाहता है 2001 में जो रिलीज हुई थी सुपर डुपर हिट एल्बम थी, विच वॉज कम्पोज बाय शंकर एहसान लॉय। और इसी का एक सुपर डुपर हिट गाना वो जिस कोई कहे कहता रहे, जो हर पार्टी की जान बन गया था यार। वैसे तो यार इस सॉन्ग की एनर्जी ऐसी थी कि शूट के दौरान भी पूरा का पूरा क्रू डांस ही कर रहा था, एंड दैट टू ऑफ कैमरा। तब फरहान अख्तर ने बोल दिया था यार, दिस वॉज द ओनली सॉन्ग वेर वी डिडंट नीड बैकग्राउंड डांसर्स, क्योंकि सब खुद ही ग्रूव करने लगे थे। तो यार मूड अगर लो हो या वीकेंड वाइब चाहिए तो ये गाना इज द अल्टीमेट पिक मी अप काइंड ऑफ सॉन्ग। तो आपका भी अगर फेवरेट गाना है ये तो मुझे जरूर बताइए, या फिर ये जो क्लासिक आइकॉनिक एल्बम है विच इज दिल चाहता है, उसका आपका फेवरेट गाना कौन सा है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपका मूड अपलिफ्ट करने के लिए ये अगला गाना कोई कहता रहे, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai. And for God's sake, please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you. Kyunki is film mein kahin chhoti-chhoti aisi cheeze hain. Especially jab characters aapas mein baat karte hain, to unki whispers, unka pyar, unka ghussa, wo theater mein jo maza deta hai, wo kahin bhi nahi dega. And for God's sake, kisi se bhi story mat suno. Don't take any spoilers. Film mein kahin aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi.
3: Spiders have free life cycle.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में एक पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeeturaj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeeturaj जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है Jeeturaj ने. वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची Jeeturaj. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय Jeeturaj विद फोर मिर्चीज.
0: साथ Jeeturaj ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
8: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स लेडीज फर्स्ट चॉइस.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
10: अब मिर्ची खा.
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है 2001 के एल्बम की, दिल चाहता है कि, जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। और एक ऐसे ही गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम रेशमा हिंगे जो की रहती है एडिसन में। यार इनको जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, ये गाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और तब जब ये गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, तब यार लगता ही नहीं था कि ये गाना है। मतलब लगता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। और प्रीति जिंटा ने एक बहुत ही प्यारा सा मोनोलॉग बोला था इस गाने के जस्ट थोड़ी देर पहले कि यार लव तो लॉजिकली होता है ना, मतलब लव में थोड़ी ना लॉजिक यूज होता है। तो कुछ ऐसा ही कहना है रेशमा हिंगे का भी, वो भी यही एग्री करती है प्रीति जिंटा के जो भी इन गाने के बोल है उनके साथ कि यार लव तो दिल से होता है, लव थोड़ी ना लॉजिकल होता है। तो जी हाँ, चलिए ये गाना बजाते हैं रेशमा जी के लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट अनदर एल्बम, हिट एल्बम जो यार बहुत पुराना है लेकिन आज भी रेलिवेंट है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDH आए। और तब तक के लिए दिल चाहता है का, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, रेशमा जी की रिक्वेस्ट पर राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कितने बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ कॉफी पीने निकले थे लेकिन वापस आते आते जिंदगी के बड़े डिसीजंस भी ले लिए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और नाम सुना मुसाफिर कैफे। और मुझे लगा कि यार कैफे का असली मेन्यू कॉफी थोड़ी ना होता है, वो तो कॉन्वर्जेशंस होते हैं। जी हाँ, नेटफ्लिक्स पर आई नई सीरीज मुसाफिर कैफे, जिसमें विक्रांत मेसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना नजर आ रही है। कहानी तो वैसे कैफे से शुरू होती है, लेकिन असल में बात उन लोगों की है जो जिंदगी के सफर में मिलते हैं, कुछ पल साथ रहते हैं और फिर हमारी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि यार कॉफी के कॉन्वर्जेशंस ही ऐसे होते हैं, कोई पहली बार आई लाइक यू बोलता है और कोई कभी कभार मुझे बस एक बात बतानी है ऐसे शुरू करता है। किसी टेबल पर दोस्ती शुरू होती है तो किसी दूसरे टेबल पर टेक केयर बोल के लोग अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। कभी किसी को नई जॉब मिलती है, कभी स्टार्टअप का आइडिया बनता है, कभी शादियां फिक्स होती है, तो कभी बस दो दोस्त 3-4 घंटे तक दुनिया भर की बातें करते रहते। लेकिन पता है सबसे मजे की बात क्या है कि सालों बाद ना कॉफी की टेस्ट याद रहे या ना रहे, लेकिन उस टेबल पर हुई हर कॉन्वर्जेशन वर्ड बाय वर्ड याद रहती है। वैसे दोस्तों, आपने भी ऐसी कॉन्वर्जेशन कई बार की होगी, तो ऐसे किसी कैफे का नाम अगर आपको रखना हो तो वो क्या होगा? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मुसाफिर कैफे क्या आपने भी देखी, जरूर बताना। और तब तक ऐसा बॉलीवुड का गाना सुनते हैं जो हर कॉफी डेट और हर दिल की बात को और भी खूबसूरत बना देता है। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La virtua la burga.
0: Mirchi, burga.
2: हेलो विनीत जी।
3: हाँ जी
2: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
3: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
2: हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
3: 7:30 बजे तक।
2: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
3: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बचा जाएगा?
2: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
3: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
2: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
3: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
2: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए।
3: हेलो
2: हाँ विनीत जी, मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
3: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
2: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने चल रहे हैं सर?
3: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
2: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
3: हेलो हेलो,
2: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
3: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
2: विनीत मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
3: अरे कॉफिन ऑफिन कर, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
3: अच्छा भैया
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
9: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
7: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
10: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
11: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
12: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
11: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aims.education.edu.
13: Enjoy your gold.

कुछ लोगों को देखते ही ना लगता है कि इन्हें अलग दिखने के लिए कभी एफर्ट्स ही नहीं करने पड़ते होंगे। वो कहते हैं ना, सम थिंग्स शाइन विदाउट ट्राइंग। शाम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी किसी की स्माइल, कभी उनका कॉन्फिडेंस, तो कभी बस उनकी प्रेजेंस। और वही बात चीज़ों पर भी लागू होती है। मतलब तो कुछ चीज़ें ना ट्रेंड्स के साथ नहीं चलती, वो हर दौर में अपनी चमक खुद लेकर आती है। और शायद इसीलिए डायमंड्स को सिर्फ ज्वेलरी नहीं, टाइमलेस एलिगेंस कहा जाता है। और अगर आप भी अपनी कलेक्शन में वो हमेशा वाली चमक ऐड करना चाहते हो तो तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, अवेल अप टू 25% ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, और ओल्ड गोल्ड अबाव 18 कैरेट एक्सचेंज करने पर 0% डिडक्शन। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। और दोस्तों मुझे भी बताना कि आपके हिसाब से किसी इंसान की सबसे खूबसूरत क्वालिटी क्या होती है, उनकी स्माइल, उनका कॉन्फिडेंस या उनका काइंडनेस। टेल मी ऑन इंस्टेट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक एक ऐसा गाना सुनते हैं जिसकी चमक कभी पुरानी नहीं होती। Only on Mirchi, it's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Inefficient.
3: Very complex.
4: Clumsy hoy.
5: Confusion hi confusion.
2: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
7: Oh no!
2: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
8: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
10: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Iselin.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
13: Ab mirchi kha.
15: Radio Mirchi, it's hot.

0: at 7:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
2: सच्ची सच्ची बताना दोस्तों, स्कूल की सबसे बड़ी टेंशन होमवर्क होती थी क्या? टीचर का वो कहना कि रोल नंबर 27 जरा बाहर तो आना। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और प्राइम वीडियो का नया शो आदर्श बाल विद्यालय और उसका बैकड्रॉप ही यार एक गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर स्कूल को संभालने की कोशिश करते हैं। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार के मेनन नजर आ रहे हैं, वो भी सीरियस रोल्स के अलावा कॉमेडी, और स्कूल के केओस में बहुत ही मजेदार लग रहा है। और नाम सुनते ही ना मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए, मतलब वो अटेंडेंस का रजिस्टर, वो चौक की स्मेल, पीटी पीरियड का एक्साइटमेंट, और वो एक दोस्त जो हर मंडे बोलता था कि यार होमवर्क तो किया है लेकिन कॉपी घर पे रहेगी। और एनुअल डे, मतलब वो दिन जिसमें डांस से ज्यादा टेंशन होती थी कि पेरेंट्स को स्टेज से कैसे ढूंढे। वैसे आप भी बताइए स्कूल का वो कौन सा टीचर या इंसिडेंट है जिसे याद करके आप आज भी बहुत हंसते हो? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए स्कूल के उन यादों के नाम एक बॉलीवुड क्लासिक राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeeturaj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्म में नहीं देखी है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
8: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी हर ड्राइव बनेगी यादगार
9: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं विराट एक ही होता है
10: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड
9: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं पर बच्चन एक ही होता है
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन सिर्फ एक ही होता है
12: एक ही होता है
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टाटा सायोनारा टू यू गाइस। लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है। जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पर बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ।

नमस्ते दोस्तों, आज की पारी सिर्फ गानों की नहीं, उन लोगों की है जो फैमिली चॉइस से बनती है। फ्रेंड्स ऑफ कोर्स, जो बिना इनविटेशन के आ जाते हैं, बिना जजमेंट के सुनते हैं और बिना वजह साथ खड़े रहते हैं। फ्रेंडशिप डे स्पेशल में स्वागत है, दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। शुरू करते हैं एक एवरग्रीन यारी एंथम के साथ। गाने का नाम है यार बिना चैन कहारे। लेट्स गो।